0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

मैं तो कहती हूँ तो कैनल खोल ले। कनाडा से ना अच्छी नस्ल के दो कुत्ते ले आ। जब वो बच्चे पैदा करने लगेंगे ना, यू विल बी रिच।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें होती हैं। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो फटाफट एक छोटा सा कॉल कर आप अपने हाल चाल बता सकते हैं। मेरे बारे में आप पूछ सकते हैं कि गगन आप कैसे हैं। नंबर है वही जाना पहचाना 01204060205, अर्थात 120-40-60-205 के जरिए आप हमसे तालमेल जोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गगन अकेला है या कोई मेरे साथ खास मेहमान है, तो चलिए ज्यादा मैं देर आपको नहीं कराऊंगा, मैं उनके बारे में बताऊंगा जरूर। लेकिन एक खास विषय है जिसके बारे में अक्सर हमने सुना है, जाना है, समझाए, लेकिन उसको जब आप डिटेल में जानेंगे तो इसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। थोड़ा सा छोटा सा इशारा कर देता हूं, CSR ये क्या है, किस तरीके से काम करती है धरातल पर, इसी के बारे में जानेंगे, और इसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। वो कौन है, कहां से, बताऊंगा जरूर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको इशारा किया था सीएसआर क्या है, ये किस तरीके से काम करती है और सरकार क्या कहती है, इसी के बारे में बात करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है और जाहिर सी बात है कि वो एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं सीएसआर हेड वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: कैसे हैं सर आप?
1: मैं ठीक हूँ सर।
0: तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत के साथ सत्कार के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और यही दिमाग में मेरे आता है, जैसे अभी देशराज जी से मेरी ऑफ एयर बात हो रही थी कि लेमैन की तरह हम बात करेंगे, एक जनमानस क्या सोचता है सीएसआर के बारे में, वो जानना चाहता है कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। सीएसआर के बारे में अगर आप परिभाषित करें तो किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे?
1: देखिए, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बहुत आसान भाषा में अगर बात करें तो सन 2013 में भारत सरकार ने एक अधिनियम पास किया जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कॉर्पोरेट्स हमारे भारत में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं या गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उनको उनकी सामाजिक जिम्मेवारी के प्रति जागरूक करना और वो कुछ एक्शन करे उस बारे में। तो वो पहले सारी कंपनियां, कॉर्पोरेट्स, घराने जो हैं वो अपने हिसाब से चैरिटी वगैरह करते रहते थे, बट अब इस कानून की माध्यम से ये उनके लिए करना मैंडेटरी हो गया। तो अगर आप देखें तो हर 3 साल में के एवरेज प्रॉफिट के 2% अमाउंट जो आता है कंपनी का
0: जी,
1: वो उसको सीएसआर में मैंडेटरी यूज करना होता है एज पर लॉ। तो काफी सारी कंपनियां इसको समुदाय स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, आपका रूरल डेवलपमेंट है, आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है
0: जी,
1: देन लिवलीहुड प्रमोशन है,
0: राइट,
1: ओल्ड एज केयर है, तो ये सारे विषय
0: बहुत
1: सारे बिंदु है इसमें। जो एक्टिविटीज हैं वो शेड्यूल 7 में लिस्टेड है, तो वो सारी एक्टिविटी पे ये खर्च करना होता है
0: जी जी। सो लिसनर्स, अगर मैं इसको समराइज करूं, इसका एक निष्कर्ष निकालूं तो बात निकल कर ये सामने आती है। मैं भी थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि लोकसभा द्वारा संशोधन विधेयक 2019 में ये पारित किया गया था और जो आप जानकारी दे रहे हैं वाकई बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि यही रिसर्च में निकल कर भी आ रहा था। सो इसके जो मायने हैं लिसनर, सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कौन कौन से वो बिंदु हैं जो सर ने

0: हमें बताए उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जरूर जानेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। और इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्री प्रियेश राठौड़ जी, जो कि हेड हैं CSR वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।
1: सारे शहर में नाम तुम्हारा दीवारों पे लिखता है।
2: ये टाइम नहीं है इस सबके लिए, सबके लिए पूरी लाइफ पड़ी है। मैं एक अच्छा सोल्जर बनना चाहता हूँ।
3: किसने रोका? सारे

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। एक खास विषय है जिस पर हम बात करने के लिए आज जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक मेहमान के तौर पर जो कि CSR वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से आते हैं, आप उसके हेड हैं, श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: हिंदुस्तान का जो एक कल्चर रहा है, तो सर हम कहते हैं कि आपने कुछ कमाई की है तो उसका 10वां भाग सामाजिक कार्यों में लगाएं। कहते हैं कि एक हाथ से आपने कमाई की, या यूं कहें कि दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए जब आप सामाजिक कार्यों में लगा रहे हैं। यहाँ जो कल्चर हम देखते हैं, यहाँ दिखावा बहुत ज्यादा होता चला जाता है, क्योंकि हम भी ग्राउंड पर जाते हैं, लोग भी इस बात को जानते हैं, समझते हैं। तो जब लोग काम कर रहे होते हैं, शोशेबाजी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, फोटो सेशन हो जाता है। एक विषय है जिसमें पारदर्शिता का जिक्र हुआ है, जो हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर एज फार एज CSR कंसर्न, क्योंकि ये कोई चैरिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कॉर्पोरेट की टुवर्ड्स द कम्युनिटी वेयर दे आर वर्किंग। ठीक है, तो उस समाज के प्रति आपको कुछ ना कुछ करना है, उसकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो एज अ CSR हेड हमें ये देखना है कि कंपनी जो पैसा खर्च कर रही है वो वास्तव में उस जरूरतमंद समुदाय के पास पहुंचे, और ये ज्यादातर हम लोग सुनिश्चित करते हैं जिसमें हमारी मदद, अधिक से अधिक मदद जो लोकल NGOs होते हैं जिनकी खासी पकड़ रहती है समुदाय के ऊपर, जान पहचान रहती है विलेजर्स के साथ, तो उनकी मदद हम लेते हैं कि इसको धरातल पे हम ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली कैसे उतार पाए। सो दीज NGOs आर रियली हेल्पिंग अस इन डिलीवरिंग द इम्पैक्ट, एक्चुअल इम्पैक्ट दैट व्हाट वी डिजायर।
0: वाकई बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, जो कि मैं आपसे उम्मीद भी कर रहा था। इस बात को मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि मेरे जरिए वो लिसनर समझना चाह रहे थे, क्योंकि जब वो ग्राउंड पे जाते हैं, हम उनको जब इकट्ठा करते हैं तो कुछ कुछ समस्याएं भी आ रही होती हैं। चूंकि आपने अपनी कंपनी का जिक्र किया, तो थोड़ा आप मुझे उसके बारे में बताएं कि ये जो कंपनी है जिसके आप हेड हैं, किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप ग्राउंड में जाते हैं, क्या काम करते हैं?
1: सो बेसिकली गगन भाई, इन इंडिया वी आर ऑपरेटिंग हाईवेज, हम लोग हाईवे मैनेज करते हैं, तो तकरीबन मोर देन 8000 लैंड किलोमीटर वी आर ऑपरेटिंग राइट नाउ, एंड वी आर हैविंग आवर प्रेजेंस इन मोर देन 10 स्टेट्स। तो इन 10 स्टेट्स में कुछ कुछ हाईवेज हैं जो हम ऑपरेट करते हैं और मेंटेन करते हैं, तो ये हमारा कोर बिजनेस है। अगर मैं CSR की बात करूं तो यस, जहां जहां पर भी हमारे असेट्स हैं उसके आसपास की जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके एजुकेशन पे, उनके स्किल डेवलपमेंट पे, उनका उनके हेल्थ केयर पे, उनका लेवलीहुड कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं उसके ऊपर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आप सुने होंगे मैंग्रोव के बारे में, मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में।
0: जी जी, तो मैं इसको डिटेल में जाना चाहूंगा आपसे, आप प्लीज बताइए।
1: तो मैंग्रोव इन गुजरात, इन द क्रीक ऑफ खंबात, वी हैव क्रिएटेड मोर देन 300 हेक्टर ऑफ ग्रीन कवर थ्रू मैंग्रोव प्लांटेशन।
0: ओके,
1: सो उसके फायदे ये है कि इट नॉट ओनली जनरेट लोकल लाइवलीहुड फॉर द कम्युनिटी विच इन्वॉल्व्स इन प्लांटेशन एंड ऑल दिस स्टफ, बट उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल बेनिफिट है वो काफी हाई है। वो पूरे जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम को वापस रिस्टोर करना, मैंग्रोव आपको पता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट कार्बन सिक्वेस्टर करते हैं, ठीक है, बाय एनी अदर प्लांट। तो जो आजकल हम CO2 एमिशंस की बात करते हैं, या जो ग्रीन कवर हमारा कम हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं
0: जी,
1: तो उसमें काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो ऐसे
0: जो पौधारोपण आप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित करता है जिस पौधे का आप जिक्र कर रहे हैं, तो लिसनर्स इस तरीके से मैंने समराइज करके ये बात आप तक पहुंचा दी। वाकई बहुत अच्छा एक विषय है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या क्या काम किया जाता है। बहुत विस्तार वाला एक क्षेत्र है, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, और ये काम मुझे लगता है कि ये पहले क्यों नहीं शुरुआत हुई इस चीज की। जो एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा कि भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है कि आप भला कीजिए भला होगा, एक लाइन के साथ वो बातें सर हमारे सामने आती हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, और सरकार ने ये एक अच्छा प्रयास किया है जो आज हमारे सामने है, तो निश्चित तौर पर ये आगे भी जाएगा और लोगों के हित में काम करेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, सो आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। एक विषय है, एक सब्जेक्ट जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सीएसआर के हेड हैं, आप हैं श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: सर हमारा रेडियो पहले बात करता है फिर म्यूजिक सुनाता है। आपकी जिंदगी में भी कभी कभी तनाव बहुत ज्यादा हो जाता होगा, कौन सा एक गाना जो आपके दिल के आसपास रहता है वही गाना हम प्ले करेंगे? मुझे लगा कि पहले बात में यहीं से शुरुआत करता हूँ, मुद्दे पे तो आता ही रहूंगा। या आप गाते भी होंगे, गुनगुनाते होंगे?
1: मैं अगर मेरी बात करूं तो कॉलेज के दिनों में काफी शौक रहा करता था मुझे गानों का।
0: अभी भी कॉलेज के दिन ही है सर आप?
1: अब बच्चे कॉलेज जाने लगे हैं उस उम्र के। तो मैं थोड़ा, आपने जैसे ही गाना बोला मैं रिकॉल करने लगा कि मुझे क्या क्या गाने पसंद थे।
0: जी जी,
1: ठीक है, मेरे समझ में जो अभी तो खैर कॉर्पोरेट लाइफ में वो सब कहीं भूल से गए हम लोग गाना गुनगुना।
0: कोई भी आसपास होगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, नेचर के लिए।
1: मैं जब फिल्में वगैरह ज्यादा देखता था वो 90 का दशक था, और उस समय आई थिंक एक मूवी आई थी अकेले हम अकेले तुम, शायद
0: आमिर खान मनीषा
1: कोइराला। तो उसका एक गाना है कि दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ और जो टॉपिक है उस पर मैं बाद में आऊंगा। फिलहाल दोस्तों ये गाना प्ले करते हैं और ये हमारे जो गेस्ट है उनकी फरमाइश है। और वाकई मुझे लगता है कि स्ट्रेस तनाव बहुत आसपास रहता है जिंदगी में, खुशियां भी हैं गम भी हैं, लेकिन गम को भुलाने के लिए एक म्यूजिक ऐसा जरिया जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और यकीन मानिए कि मेरे मेहमान के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब मैंने गाने का जिक्र किया है। और आप जब ये ब्यूटीफुल ट्रैक सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी पुराने दौर में चले जाएंगे। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर जुड़े हुए CSR वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के आप CSR डिपार्टमेंट के आप हेड हैं, श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: थोड़ा चैलेंजेस के बारे में मैं अगर आपसे जानूं कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, एनजीओ से मिलते हैं, सरकार की कुछ योजनाएं हैं आप आगे तक लेकर जाना चाहते हैं या चाहते हैं कि कुछ कुछ नया और आए, नए बदलाव आए, या कुछ चैलेंजेस जो आपने फील किए हैं तो अगर आप हमारे लिसनर्स को बताएं तो वो मैं भी समझ पाऊंगा कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सो गगन जी, ये बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है जो हम CSR में जो हम काम करते हैं। तो कम्युनिटी वेलफेयर के बारे में तो प्रायोरिटी रहती ही रहती है, बट उसके साथ साथ काफी चैलेंजेस और लिमिटेशंस भी हम कभी कभी महसूस करते हैं। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो कई बार कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम्स चलती रहती
0: है,
1: आवास योजना है या आयुष्मान कार्ड है, कई बार हम ये सामना करते हैं कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो जो जरूरतमंद है उसको पहले मिले सेवाएं।
0: जी,
1: अब कुछ गवर्नमेंट स्कीमें भी रन हो रही है पैरेलल, कुछ हम भी हेल्थ कैंप वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में हम लोगों को एलोकेट करना पड़ता है वो फंड, ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है, अदरवाइज जो काम गवर्नमेंट कर रही है वही आप भी कर रहे हो, तो आप उसी चीज को दोहरा रहे हो और आप पैसा भी वेस्ट हो रहा है उसमें। सेकेंड, जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं CSR के थ्रू वो हम नीड बेस्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है, जहाँ कोई स्कीम नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जो एक्सक्लूडेड कम्युनिटी है, जो जिन तक लाभ पहुंच नहीं पाया, उनको भी हम शामिल कर सके इसमें। लिमिटेशन कई बार ये होती है कि हमारे पास भी बहुत लिमिटेड किटी होती है। ठीक है, अब वो उस लिमिटेड किटी में बहुत लोगों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, तो कई बार हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं।
0: वो किसकी रिक्वायरमेंट आती है, आम जनमानस की?
1: जैसे कि जनरली दो तीन चीजें होती है उसमें। आम जनमानस डायरेक्टली हम तक वही पहुंचता है जो हमारे प्लांट्स या हमारे एसेट के आसपास रहता है।
0: जी,
1: इन माय केस वी आर हैविंग हाईवेज, तो हाईवेज के आसपास जो गांव बसे हुए हैं या लोग बसे हुए हैं, तो वो हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो वो आते हैं अपनी डिमांड लेकर,
0: जी,
1: कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट लेकर के, हमारे गांव में स्कूल बना दीजिए, हमारे गांव में कुछ शौचालय बनवा दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
0: जी,
1: कुछ होती है हमारे स्टेक होल्डर के तरफ से, जैसे कि वहां के लोकल DM हो गए, पुलिस अधीक्षक हो गए, तो उनको कुछ लगता है कि भाई इस एरिया में कुछ सुधार लाने की जरूरत है, तो वो भी हमें अप्रोच करते हैं।
0: वेरी गुड।
1: मेजरली जो NGO पार्टनर्स हैं वो अलग अलग प्रपोजल्स लेके आते हैं हमारे पास साल में, तो ये वो महीने होते हैं जनवरी से लेके मार्च तक, जब हम पूरा फाइनेंशियल ईयर का प्रिपरेशन करते हैं इन सब रिक्वेस्ट लेटर्स के साथ।
0: वेरी गुड। सर, कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट बॉडी है, या जो मैं बात कर रहा था कि आप और हम, यानी कि जनमानस, लोग अवेयर तो हैं, लोग काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, और वो NGOs की बात हो, CSR की बात हो, तो इसका मतलब उनके भी दिमाग में है कि कोई एक ऐसी चीज है, एक फंड आता है और इस तरीके से वो सामाजिक कार्यों में लगता है। तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने सुनो शारदा 90.8 FM को चुना है, अपने मन की बात आप यहाँ कह रहे हैं और इसके बारे में डिटेल में बातें बता रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं लिसनर्स, और चूंकि बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, कुछ और बातें अगर निष्कर्ष निकलना बाकी है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में हमारे जो हेड साहब हैं श्री प्रियेश जी, उनसे जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: सुरक्षित चलिए, सुरक्षित पहुंचिए। हर रोज मैं सुनू शारदा 90.8 FM पर एक अपील आप लोगों से कर रहा होता हूँ। रोड रेस की घटनाएं होती हैं, अमूमन इतने झगड़े बहुत बड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से जनधन हानि हो जाती है। सुरक्षित चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने फैमिली के पास पहुंच पाएंगे, सुरक्षित नहीं चलेंगे तो कभी कभी आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सुरक्षित नहीं चलेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ता उम्र हमें एक पछतावा होता है क्योंकि आपके शरीर का अंग भंग हो चुका होता है कि काश उस वक्त मैंने रोड सेफ्टी के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन किया होता। नमस्कार, एक बार फिर से शुरू शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं गगन आपके साथ। CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये एक विषय आता है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और फिर अभी इसी के बारे में हम बात कर रहे थे सर से। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ स्टूडियो में आज एक खास मेहमान है। शुक्रगुजार हूं मैं देशराज सर का जिन्होंने ये एक साक्षात्कार हमें दिलवाने का मौका दिया। और हम बात कर रहे हैं वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के CSR हेड हैं श्री प्रियेश राठौर जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये गंभीर मुद्दा है, रोड सेफ्टी वाला, रोड एक्सीडेंट वाला, लोग नहीं मानते, लोगों को पता है कि हेलमेट लगाकर चलना चाहिए। मैं खुद रोड सेफ्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं जो कि मैं हरियाणा से जुड़ा हुआ हूं, तो इन चीजों को मैं नजदीकी से देखता हूं। यही वजह है कि मैं रेडियो पर भी लगातार बोल रहा होता हूं। तो प्लीज आप मुझे बताएं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो CSR आपकी एक्टिविटी है, इसके तहत जब आप काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरीके के आंकड़े हैं, लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपका अनुभव क्या कहता है सर?
1: देखिए गगन जी, अगर रोड सेफ्टी की बात करें तो ये बहुत ही क्रूशियल है हमारे पूरे देश के लिए। आपको जान के हैरानी होगी कि हर साल इंडिया में 1.5 लाख से ज्यादा मौतें होती है सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से। उसके दो पहलू हैं, एक तो है कई पर जगह पे इंजीनियरिंग इश्यूज हैं रोड्स में, हाईवे,
0: ये तो नितिन गडकरी साहब ने कहा है सबसे बड़ा इशू है।
1: दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है वो है लोगों का बिहेवियर,
0: ये भी है।
1: ठीक है, आप सड़क पे देखोगे कितने सारे टू व्हीलर्स, उसमें से कितने हेलमेट लगाते हैं
0: जी,
1: सेफ्टी हेलमेट लगाती भी है तो वो ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए, आप देखना उसकी बेल्ट तक सीधी नहीं बांधी जाती है।
0: सही ऑब्जर्वेशन सर, बिल्कुल सही कहा।
1: तो हमारा क्योंकि हम हाईवेज सेक्टर है हमारा, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस करें। उसके लिए हम कैंप्स लगाते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हेलमेट्स वगैरह भी, उसके रेडियम। आप यूपी में अगर अभी देखो तो फॉग का मौसम है, विजिबिलिटी बहुत कम है, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है गांव-गांव जाकर, स्कूल में, कॉलेज में जाकर, इंटर कॉलेज में जाकर लोगों को, बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में सिखाएं
0: जी।
1: उनको यातायात के नियम हम बताते हैं, डूज एंड डोंट्स, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जान हम बचा सकें बिहेवियर पे थोड़ा सा सुधार लाके।
0: बेशक,
1: तो ये हमारी एक अहम प्राथमिकता है कि कई बार हमने देखा है कि परिवार में एक ही आदमी कमाने वाला होता है और उसकी रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, फिर उस परिवार पर आप कल्पना कर सकते हैं आप क्या हो जाता है
0: जी।
1: तो ये एक बहुत गंभीर विषय है हमारे देश के लिए, और हम लोग हमारी वी आर डूइंग अवर बिट कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट कर सके आपके माध्यम से।
0: बहुत खूबसूरत। सो लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि आपकी जान बेशकीमती है। और सर दो लाइनें हैं जो खुद सोची, कभी लिखी, या यूं कहें कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं सुनो शारदा, कि ये जो जान है दरअसल आपकी जान नहीं है, ये जो जान है दरअसल आपकी जान नहीं है, इस जान पर आपके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, उनका हक है। तो उनकी खातिर अपनी जान का ख्याल रखिए क्योंकि वो आपकी सलामती की कहीं ना कहीं दुआएं कर रहे होते हैं। और अगर एक महिला को जब हम देखें भारतीय संस्कृति में, जब एक त्योहार आता है करवा चौथ, वो एक पति की लंबी उम्र की कामना करती है, और जब बहुत अफसोस होता है कि पता चला कि वही व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में इसलिए मारा गया क्योंकि उसके पास हेलमेट नहीं था। अक्सर हमने देखा है सर कि लोग बाइक पर जा रहे होते हैं, महिला पीछे अगर बैठी है तो वो पति का हेलमेट का सामान अपनी गोद में लेकर बैठी हुई होती है, यानी कि वो इतना भी नहीं कह सकती कि प्लीज आप हेलमेट लगा लें क्योंकि ये आपकी जान से जुड़ा हुआ है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारा जो रेडियो स्टेशन है वाकई इसी तरीके के काम करता रहता है, लोगों के बीच में जाता है, लोगों को अवेयर करता है। सो लिसनर्स, मैं दिल की गहराइयों से सर का शुक्रिया अदा करूंगा, और एक बार फिर से मैं आप सबको बताना चाहूंगा CSR हेड जो कि वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के आप हेड हैं श्री प्रियेश राठौर जी हमारे साथ जुड़े रहे। तो सर अगर आपको लगता है कि कोई बात छूट रही गगन, मैं ये कहना चाहता हूं, तो आप कह सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपका और शारदा यूनिवर्सिटी का कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और आपसे बातें करने में बड़ा मजा आया मुझे। एक चीज मैं जरूर की ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सड़क यातायात पे गंभीरता से लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि उससे बहुत सारे नुकसान है हमारे कंट्री को, आर्थिक आपकी खुद की परिवार की जो लॉस है ही है, बट एज अ नेशन हमारी इकोनॉमी पे भी इसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब एक युवा की मौत होती है या एक महिला या एक बच्चा एक्सीडेंट में अगर विकलांग हो जाए तो यू कैन इमेजिन।
0: जी,
1: सो आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों से विनंती है कि सड़क पे आप यातायात का नियमों का अच्छे से पालन करें और विशिंग यू ऑल द बेस्ट।
0: क्या बात है, आखिर में ये जो संदेश है, ये जो बातें हैं कि आप सभी को दिल से बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं तभी काम करती हैं जब आप सुरक्षित चलेंगे, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो एक बार फिर से सर, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक सामाजिक काम आप कर रहे हैं, और जब हाथ से हाथ मिलेंगे तो निश्चित तौर पर हम दोनों आगे ही जाएंगे। तो वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9211। अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से वो संपर्क सूत्र माध्यम मैं आपको बता देता हूं, 120 40 60 205, फिर से दोहरा देता हूं, 120 40 60 205 के जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बताएगा जरूर कि ये चर्चा कैसी रही। इसके अलावा मेल के जरिए मेल जोल बढ़ा सकते हैं, 90.8fm@sharda.ac.in के जरिए आप हमें पत्राचार कर सकते हैं, और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए खुले हुए हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: ओरिजिनल क्रेडिट्स एल्बम हीरा पन्ना, सिंगर किशोर कुमार, लता मंगेशकर, लिरिसिस्ट आनंद बख्शी, म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन और इसी गाने को रिक्रिएट किया गया है। सो लेट्स एंजॉय इट। रिक्रिएशन क्रेडिट्स आर्टिस्ट दीपशिखा रैना, म्यूजिक डायरेक्टर अनुराग अभिषेक। चलिए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना है सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। पन्ना की

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:12 हो चुके हैं, 24 तारीख है यानी कि मंडे का दिन। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से, भोले बाबा से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। इंस्टीट्यूट ऑल यू सुरशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरशादा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और यकीन मानिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सेहत सही तो लाभ कई। इस बारिश के मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में अक्सर होता क्या है कि ऑन रोड हमें सीवर नजर नहीं आ रहा होता। ऑन रोड सीवर के ढक्कन कभी कभी खुले होते हैं, और बारिश के मौसम में जल भराव की जब स्थिति होती है तो वहीं जहां ढक्कन खुले हुए हैं घटना दुर्घटना घट जाती है। नाले ओवरफ्लो होते हैं जिसकी वजह से पानी नालों से निकलकर या नाली से निकलकर सड़क पर आ जाता है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे समय में हमारा फर्ज बनता है कि सुरक्षित चले, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और साथ ही ऐसे मौसम में अक्सर हमने ये देखा है कि पोल्स यानी कि जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें भी करंट दौड़ जाता है, जिसकी वजह से जाने अनजाने में जनधन हानि हो जाती है और कभी कभी तो बहुत बड़ी घटना घट जाती है। और बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि पेड़ गिर जाते हैं। बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि रोड धस जाती है। जब कोई स्पीड में गाड़ी चलाकर आ रहा है तो आगे उसे नजर नहीं आता कि रोड धसी है या नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि जो आपकी तय सीमा लिमिट है उससे थोड़ा कम चलिए, सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। बारिश के मौसम में कैसा अपना ख्याल रखें, क्योंकि सच कहते हैं सेहत सही तो लाभ कई, इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा स्थिति है जो बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश होने के बाद हानिकारक टॉक्सिन्स के निकालने से होता है। ये अक्सर नव युवतियों में महामारी के दौरान टैम्पोन के प्रयोग के कारण भी होता है, हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है।
1: ये कुछ विशेष प्रकार के टैम्पोन के प्रयोग से बैक्टीरिया के वृद्धि के कारण टॉक्सिन्स के निकलने से होता है।
0: इसके लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी और चक्कर आना और चकत्ते पड़ना है। ये लक्षण एक साथ आते हैं और समय के साथ बिगड़ते जाते हैं।
1: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि इससे बचाव कैसे किया जाए और इसके क्या लक्षण हैं। सही इलाज से ये ठीक हो जाता है।
0: ये लक्षण दिखने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या ANM से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
5: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:26 हो चुके हैं 24 तारीख।

0: कि पानी भरपूर पीजिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। सच बात तो यह है कि ऐसे समय में मौसम जब बदलता है तो निश्चित तौर पर उसका जो फर्क है वो आपकी सेहत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा होता है। जाहिर सी बात है कि आज है मंडे, तो मंडे को ट्रैफिक थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। ऑन रोड जब आप निकल रहे हैं तो घर से थोड़ा समय से पहले निकलेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। आज 24 अगस्त 2026 को ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के क्षेत्र में वीआईपी मूवमेंट और साथ ही साथ निर्माण कार्य और एक्सप्रेसवे पर कल एक हादसे की वजह से कुछ रूट कल की अगर मैं बात करूं तो दिक्कतें परेशानियां हुई थी, लेकिन आज थोड़ा वीआईपी दौरे के कारण सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भारी वाहनों के लिए रूट पूरी तरह डायवर्ट रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, हैवी व्हीकल की मैं बात कर रहा हूं, तिलपता दादरी मार्ग ग्रेटर नोएडा की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो वहां पर आप वैकल्पिक जो रास्ता है, जो दूसरा रास्ता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 लेन अंडरपास निर्माण कार्य में देरी और हालिया बारिश की वजह से जो गौर चौक है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चौराहे पर पीक आवर्स के दौरान भारी जाम की स्थिति बनी हुई है, तो उससे भी आप अपने आप को बचाकर निकलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें इनको नजरअंदाज न करेगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। कालिंदी कुंज पर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है रेड लाइट की वजह से, और इधर परीचौक पर भी दिक्कतें परेशानियां लोगों को होती है। साथ ही साथ जब आप नॉलेज पार्क की तरफ आ रहे हैं तो वहां पर भी गोल चक्कर पर थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक रहता है, और अमेठी से पीछा जो कहते हैं ना, अमेठी वाला जो एंट्रेंस गेट है, वो जब आप पीछे से इस तरफ आ रहे हैं शारदा विश्वविद्यालय की तरफ या शारदा विश्वविद्यालय की तरफ जो सीएनजी पंप है वहां पर भी ट्रैफिक की स्थिति बनी रहती है। तो बहुत सोच कर समझ कर संभल कर आप निकलेगा, और साथ ही साथ जब एक रास्ता है तो एक ही लेन बनाए, यानी कि उसको ओवरटेक ना करें, गलत दिशा से आप ना आए, वरना जाम की स्थिति बनी रहती है। और साथ ही साथ एम्बुलेंस भी वहाँ फंस जाती है तो दिक्कतें परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। ये छोटी छोटी बातें इनको नज़रअंदाज ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और क्या है अपडेट जानेंगे जरूर मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुन शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।
1: चोरी छिपे घुस गयी कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

धीरे चलो। आज मैं बात कर रहा हूँ कि बारिश के मौसम में किस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सच बात तो यही कि सेहत सही तो लाभ गई। और सच कहते हैं जो कहते हैं कि जान है तो जहान है। बारिश के मौसम में सुरक्षित चलिए, स्पीड का ध्यान रखिए, यानी कि थोड़ी कम रखिए स्पीड, क्योंकि आगे गड्ढा है, क्या है कुछ नजर नहीं आता। बारिश के समय में बिजली के खंभों में करंट उतर जाता है, तो उससे भी अपने आप को बचाकर रखना है। बारिश के मौसम में पेड़ गिर जाते हैं तो घटना दुर्घटना घट सकती है। जब आप ऑन रोड हैं तो सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या करें क्या ना करें उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है खान पान का। जब खान पान का मैं जिक्र करता हूं तो बात निकल कर ये सामने आती है, एक्सपर्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि उबला हुआ पानी पीजिए, यानी कि पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हमेशा पानी उबाल कर या फिल्टर कर आप पिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप ले सकते हैं, काढ़ा, हर्बल टी, अदरक वाली चाय या गर्मा गर्म सूप आप पी सकते हैं। बाहर के खाने से यानी कि अपने आप को बचा कर रखिएगा। स्ट्रीट फूड, चाट और पहले से कटे हुए फल बिल्कुल आप ना खाएं, इनमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। पत्तेदार सब्जियों से आप परहेज करें, इस मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। तो ये कुछ खास बातें, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और भी कुछ बातें हैं उसके बारे में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
1: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
0: वो
1: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
2: क्या हुआ बेटिया?
3: डॉक्टर साहब
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपके ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 9:40 हो चुके हैं, 24 तारीख है, हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक डायवर्जन के बारे में, VIP मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, मंडे के बारे में। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि 10 से 15 मिनट पहले आप निकलेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। ऐसी जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो सुकून से आप अपने आप को महसूस करते हैं, सुकून से आप टाइम से ऑफिस पहुंच जाते हैं। और शाम के वक्त में अगर आप थोड़ा सा बहुत ध्यान से, यानी कि ट्रैफिक के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो कोई भी दिक्कत परेशानी होगी नहीं। मसलन हमने ये देखा है कि ऑन रोड जब आपको पता है कि एक लेन लगी हुई है, हम दूसरी लेन बना देते हैं जिसकी वजह से सामने वाले को निकलने का रास्ता मिलता ही नहीं। और अक्सर हमने देखा है कि शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे के सामने जो एक CNG है, बराबर में CNG है, और ऑन रोड जब बहुत सारे व्हीकल इकट्ठे हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं, तो निकलने का रास्ता मिलता ही नहीं है। वहां पर एक एम्बुलेंस भी निकल रही होती है क्योंकि शारदा अस्पताल उसको समय से पहुंचना होता है। तो हम सब से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि प्लीज समझदारी दिखाइए, समझदारी का परिचय दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, दूसरों की भी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि एम्बुलेंस के जरिए किसी मरीज को यथासमय अस्पताल पहुंचना है। गुड मॉर्निंग। चलिए, हमारे आसपास और क्या खास है, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो एक नंबर है 9971009001, हेल्पलाइन नंबर है, ये ट्रैफिक पुलिस का नंबर है। आप इस पर अपनी जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ से हम निकलें या कहाँ कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो आप इनको अपडेट कर सकते हैं 9971009001 पर।

0: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खातिर भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: भाई और बहनों, इस गाने को आवाज दी है हीर ने, म्यूजिक दिया है हीर और अमन नूर ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स अमीर खुसरो। जी हाँ, गाने के बोल हैं छाप तिलक सब छीनी री मोसे नैना मिला के, फ्रॉम द मूवी गिनी वर्स सनी टू। आइए सुनते हैं छाप तिलक ऑन सुरोशादा 90.8।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। बारिश के मौसम में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या करें क्या ना करें, ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि बारिश के मौसम में ऑन रोड जब आप चल रहे होते हैं जल भराव की वजह से कहीं कोई गड्ढा है हमें नजर नहीं आता, इसलिए सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। अपनी गाड़ी की जो स्पीड तय है उसे थोड़ा कम रखिए। इसके अलावा घर से थोड़ा 5 से 10 मिनट पहले आप निकलें ताकि ऑफिस आप समय पर पहुंच पाए। बिजली के खंभों में करंट आ जाता है, उससे अपने आप को बचा कर रखिए। और ऑन रोड अक्सर पेड़ गिर जाते हैं तो वहां पर कोई घटना दुर्घटना ना घटे, वहां से अपने आप को बचा कर निकालिएगा। और कुछ खास बातें जैसे कि घर की देखभाल के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि खान पान का ध्यान रखिएगा, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप खा सकते हैं और बाहर के खाने से परहेज करेगा। अब बात कर लेते हैं घर की देखभाल की, यानी कि होम केयर। मच्छरों को पनपने न दें, क्योंकि जब बीमारी नहीं होगी और सेहत सही होगी तो लाभ कई होंगे। घर के आसपास कूलर या गमलों में पानी जमा न होने दें ताकि डेंगू मलेरिया से बचाव हो सके। सीलन और फंगस से अपने आप को बचा कर रखें। अलमारी और कपड़ों को सूखा रखने के लिए कपूर या सिलिका जेल के पाउच का इस्तेमाल आप करें। वेंटिलेशन जरूरी है, जब बारिश थमे तो थोड़ी देर खिड़कियां खोलें ताकि घर के अंदर की नमी और उमस कम हो सके। सफर आपका सुरक्षित रहे इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आपका बदन गीला है, कपड़े गीले हैं तो तुरंत बदल लें। अगर आप बारिश में भीग कर आ रहे हैं तो तुरंत नहाकर सूखे कपड़े पहने ताकि सर्दी खांसी ना हो। रेन गियर साथ रखें, यानी घर से बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। गाड़ी धीरे चलाएं, यानी सड़कों पर फिसलन और जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग के कारण दुर्घटना का खतरा रहता है, इसलिए स्पीड कम रखें। और वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिल जाता है, मिलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आप घर पर रहकर अपनी फैमिली के बीच में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और मनोरंजन के लिए बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। एफएम यही कहता है कि सेहत सही तो लाभ कई। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वन एंड ओनली रेडियो एफएम सुनो शारदा 90.8 एफएम, जो कि अपने ग्रेटर नोएडा का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। श्रोताओं कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 सालों में पड़ती है। इसी दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चे का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग समझ नहीं पाते कि बच्चे को कब, क्या और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। बस यही उलझन दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी। भाभी, सबसे पहले आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत शुक्रिया आपका।
0: भाभी जी, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि दूध ही काफी है। असल में सही तरीका क्या है आपके अनुसार?
1: हाँ, ये आपका जो प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार बोलते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलता है।
0: कहने का मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी हो जाता है?
1: हाँ बिल्कुल, दूध के साथ साथ खाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए दूध ही काफी नहीं। अब उसे अलग अलग तरीके का खाना खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को कई तरीके का खाना खिलाया जाए, खाने में विविधता रखी जाए जिससे बच्चे का विकास तेजी से हो।
0: अच्छा, तो भाभी बच्चे के खाने में क्या क्या देना चाहिए?
1: बच्चे के विकास के लिए बहुत सारे तत्व जरूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के भोजन में प्रोटीन होना बेहद जरूरी है। इसके लिए दालें और अनाज सबसे अच्छा विकल्प है, जैसे कि मसूर, अरहर की दाल का पानी या बिल्कुल घुली हुई दाल। ये बच्चे को ताकत देंगे और उसका शरीर स्वस्थ बनाएंगे। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ भी बहुत अहमियत रखते हैं। इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा मिलती है। या फिर मूंग दाल की बिल्कुल पतली सी खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे की हड्डियों को मजबूत करती हैं। अब हम सब्जियों की बात करते हैं। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चे को जरूरी खनिज और ताकत देती हैं। ये उनके स्वास्थ्य विकास के लिए बेहद आवश्यक हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी के, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कई जरूरी महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, एनीमिया से बचाते हैं और शरीर के विकास में मदद करते हैं। अगर परिवार में अंडा और मांस खाया जाता है तो वो भी बच्चे को अंडे की जर्दी या हड्डियों का सूप दिया जा सकता है। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर घर में मांसाहार नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं, बस दूध और दूध से बने पदार्थों की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां बेहद जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम। ये बच्चे की आंखों की रोशनी और इम्यून सिस्टम के लिए बेहद अच्छे होते हैं।
0: भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या कुछ और खास बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चे को स्तनपान जरूर कराते रहना चाहिए, ये किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है।
0: भाभी, लोग तो ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन बची है कि कितना खिलाएं और कितनी बार खिलाएं।
1: बेहद अहम प्रश्न आपने मेरे से किया और मैं अपने श्रोताओं को सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी कि ये जानकारी बेहद जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार खाना देना है। अगर मात्रा सही नहीं होगी तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी।
0: हाँ भाभी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन जरा इस बात को विस्तार से समझाइए।
1: देखिए शशि जी, बिल्कुल मैं इस बात को विस्तार से ही समझाऊंगी, क्योंकि माँ और बच्चे का स्वास्थ्य हमारे समाज के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब माँ स्वस्थ होगी तभी वो बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएगी। जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधा कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए, कोई बड़ी कटोरी नहीं बल्कि 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार देना चाहिए। इसके साथ 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो तब उसका खाना और भी बढ़ा देना चाहिए। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार खाना देना चाहिए, साथ ही 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, सीधी बात तो ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बार बार खिलाने का तरीका भी बढ़ना चाहिए।
1: हाँ, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, जब बच्चे के शरीर का विकास तेजी से करना है तो बच्चे के भोजन की मात्रा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बच्चे का शरीर और दिमाग इस समय तेजी से विकसित होता है, अगर माता पिता भोजन का ध्यान रखें तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका भविष्य भी मजबूत और उज्जवल बनेगा।
0: भाभी, एक बात मैं अक्सर देखता हूँ कि कई बार माँ बच्चे को खिलाते वक्त खुद टीवी देखने लगती है या मोबाइल पर बात करने लगती है, कुछ तो उसके खेलते समय मुंह में खाना डाल देती हैं। क्या ये तरीका सही है?
1: तरीका तो बिल्कुल सही नहीं है। माँ को बहुत ध्यान से अपने बच्चे को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि भोजन का उसके शरीर से गहरा संबंध है। ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खिलाते समय माँ या जो भी खिला रहा है उसका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चे पर होना चाहिए। बच्चा छोटा है तो कभी कभी गले में भी अटक सकता है, कभी खाना गिरा सकता है, ऐसे में लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है।
0: ये बात बिल्कुल सही कही है आपने टीकन भाभी। बहुत लोग तो बच्चे को अपने खाने की थाली से ही थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं।
1: हाँ, ये भी ठीक नहीं है। बढ़ते बच्चे को उसका खाना हमेशा अलग कटोरी और चम्मच में ही देना चाहिए, इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चा भी धीरे धीरे खाना खाने की आदत सीख लेता है।
0: भाभी, एक और समस्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट, चिप्स या बिस्किट दे देते हैं, सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाएगा।
1: यही तो सबसे बड़ी गलती है। चॉकलेट, चिप्स, जूस, बिस्किट, ये सब बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाती हैं। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसी चीजों से भर गई तो असली पोषक खाना तो वो खा ही नहीं पाएगा, इसलिए बच्चे को इनसे दूर रखना चाहिए।
0: और भाभी, क्या 6 से 23 माह के बच्चों के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है?
1: हाँ, क्यों जरूरी नहीं होता, बेहद जरूरी होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जैसे बच्चा ऊपर का आहार खाने लगता है तो माँ के दूध को देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तब भी माँ का दूध उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। माँ के दूध में ऐसे पोषक तत्व और एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं, उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है।
0: भाभी, जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ का ही काम है?
1: नहीं, बच्चे को संभालना सिर्फ माँ का काम नहीं, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है। खासकर पिता और दादी की खास भूमिका होती है। ऐसे में अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पलता है।
0: भाभी जी, आपने पिता की जिम्मेदारी की बात की है, तो पिता की जो जिम्मेदारियां हैं आखिर वो क्या क्या होती हैं?
1: देखिए, माँ किसी भी बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला होती है, लेकिन अगर हम पिता की बात करें तो पिता की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना, देखभाल करना, उसे सहयोग करना भी बेहद जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लें, तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है। पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए जरूरी पोषक तत्व शामिल हों, जैसे पीली दालें, गहरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर घर में मांस खाया जाता है तो अंडा और मांस भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। और दादी की क्या क्या भूमिका हो सकती है?
1: हाँ देखो, दादी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है। दादी को चाहिए कि वे माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करें। घर के छोटे छोटे काम जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, ये सब अगर दादी कर दे तो माँ को बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिलता है। दादी बच्चे के साथ खेल सकती है, उसे दुला सकती है, ताकि माँ थोड़ी राहत पा सके।
0: भाभी आपने पिता और दादी की जिम्मेदारी की बात तो कर ली, लेकिन दादा का रोल भी तो घर में बहुत महत्वपूर्ण होता है ना?
1: बिल्कुल होता है। दादा का रोल बहुत महत्वपूर्ण और बच्चे के लिए अहम होता है। वे अपने अनुभव से माँ और पिता दोनों को समझाते हैं कि बच्चे की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब दादा बच्चे को गोद में लेते हैं, उससे बात करते हैं या उसके साथ खेलते हैं, तो बच्चा बहुत खुश होता है। दादा का दुलार बच्चे को सुरक्षा, अपनापन और खुशी का एहसास कराता है। दादाजी घर के माहौल को सकारात्मक रखते हैं। अगर कभी माँ थक जाए या पिता उलझन में पड़ जाए तो दादाजी उन्हें समझाते हैं, हिम्मत देते हैं। साथ ही साफ सफाई, समय पे टीकों को लगवाना, डॉक्टर की बात मानना जैसी बातों को बार बार याद दिलाते हैं।
0: तो श्रोताओं, जैसे ही बच्चा 6 माह यानी 180 दिन का हो जाए, तभी से उसके लिए माँ के दूध के साथ साथ घर का बना ताजा आहार देना शुरू कर दें। ये क्रम 6 से 23 माह तक चलता रहे, यानी स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी देते रहें। खाना हमेशा घर में ताजा बनाकर नरम और अच्छी तरह मसल कर ही दें। खिचड़ी, उबला हुआ आलू, अच्छी तरह पीसी दाल, पका हुआ गाजर, इन सब को मसल कर दें ताकि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। बच्चे के लिए हाइजीन बेहद जरूरी है। जो भी बच्चे को खिलाए, खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं, शौच जाने के बाद खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने के बाद भी हाथ धोएं। इससे पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन दूर रहते हैं। बच्चे के लिए अलग कटोरी और चम्मच रखें, इसे शेयर ना करें, इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चे को खाने की आदत भी ठीक से बन जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार के हर सदस्य, माता पिता, दादा दादी, सब मिलकर बच्चे की देखभाल में सहयोग करें, तभी बच्चा स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल रहेगा।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों याद रखिए कि सेहत सही होगी तो लाभ भी कई गुना होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: और अब टिकन भाभी समय हो चला है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का। फिलहाल के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।

बच्चे, स्वस्थ बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। उन्हें स्वस्थ बनाता है पोषण। पोषण उम्र के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। ऐसे ही बढ़ता रहे हर बच्चा, और इसके लिए जरूरी है सही समय पर सही आहार, जिससे मजबूत बने बच्चे का आधार। जन्म से 6 माह तक के बच्चे के लिए केवल माँ का दूध ही उसका पोषण है। इसमें वो सब होता है जो बच्चे के सही पोषण के लिए जरूरी है। लेकिन 6 माह का होने के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ घर में पका ताजा खाना देने की जरूरत होती है। हम घर में जो खाते हैं, जो हमारे आसपास उगता है, मिलता है, उसी से तैयार भोजन बच्चे को देना है। घर में बने खाने में बस थोड़ा सा बदलाव करके उसे बच्चे के लिए अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है। बच्चा अभी बहुत छोटा है और अब तक केवल माँ का दूध पीता रहा था, इसलिए अभी उसे ऐसा खाना देना जरूरी है जिसे वो आसानी से निगल सके। यानी हमें बच्चे को मुलायम, नरम, अच्छे से मसल कर खाना खिलाना होगा। जैसे हलवा, सूजी या आटे का, मसली खिचड़ी, मसली खीर, मसला केला या उबला आलू, दाल, चावल, दाल में मसली रोटी और सब्जी। बच्चे के खाने में थोड़ा सा तेल या घी अवश्य मिलाएं, जिससे भोजन की पौष्टिकता बढ़ेगी। आयोडीन की कमी दूर करने के लिए खाने में केवल आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। साफ पीने का पानी दें। बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है, इसलिए बच्चे के भोजन में गाढ़ेपन का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बच्चे का भोजन इतना गाढ़ा हो कि चम्मच तिरछा करने पर धीरे धीरे टपके। याद रखें, भोजन इतना पतला ना हो कि तुरंत ही बह जाए। बच्चे को 3 से 4 कटोरी खाना पूरे दिन में कम से कम 4-5 बार दें और आहार की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं और साथ ही माँ का दूध पिलाना जारी रखें।

ध्यान रखें, बच्चे को भोजन के बाद माँ अपना दूध पिलाए। यदि पहले पिला देगी तो शिशु का पेट माँ के दूध से ही भर जाएगा और वो खाना नहीं खा पाएगा। दाल और चावल की जो खिचड़ी आप खाते हैं, उसमें थोड़ी सी हरी पत्तेदार सब्जी डालकर बनाएं। उसे थोड़ा सा घी या तेल डालकर बच्चे को खिलाएं। इससे खिचड़ी में विटामिन ए बढ़ेगा, जिससे बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ेगी। ज्यादा आयरन मिलेगा, जिससे खून बनेगा और ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे बच्चा तंदुरुस्त होगा। खिचड़ी को दही के साथ देने पर प्रोटीन और कैल्शियम भी बढ़ जाएगा, जो बच्चे की हड्डियों को मजबूती देगा। ऐसे ही दाल दलिया बनाते समय कोई भी हरी पत्तेदार सब्जी और तेल या घी मिलाकर देने पर पौष्टिकता बढ़ जाएगी। ज्वार, बाजरा या गेहूं का आटा, चना दाल और तिल मिलाकर पौष्टिक पंजीरी बना सकते हैं। सभी वस्तुओं को अलग अलग भूने, ठंडा होने पर पीस लें। खिलाने के लिए 100 ग्राम दूध में मिलाएं। इसमें गुड़ मिलाकर लपसी की तरह खिलाने से शरीर के लिए जरूरी ज्यादा प्रोटीन और कैलोरी तथा हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम मिलेगा। बच्चे को खाना खिलाने से पहले अपने हाथ साबुन से धोएं। बर्तन धोकर ही खाने के उपयोग में लें। खाना ढक कर रखें। पानी डंडी वाले बर्तन से ही लें।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार, अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार

0: उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आरके शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम ख़राब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना काम ही है, जाना ही है,
1: काम बहुत ज़रूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, देखें बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम होता है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैरी में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें,
0: उसमें आराम
1: की जगह मिल जाए, लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह की जगह है उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें इससे। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
1: हीट स्ट्रोक
0: हो जाता है,
1: बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ये ORS?
1: एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
1: दिनचर्या तो यही कि सुबह जल्दी उठे
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा, और शरीर भी ठीक रहे।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें, थोड़ा सा जितना भी हो सकता है, जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें। बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
0: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो कौन?
1: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
2: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
1: जल्द मिलते हैं।
0: हेलो हेलो हेलो,
3: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
4: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
6: इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda. Suno Sharda.
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के

आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
2: प्लीज।
1: थैंक यू।
3: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
2: अलिका शरारती
3: वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ ही पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित कर रही है। अगर हम बात करें मछली पालन की, तो मछली पालन व्यवसाय में किसानों और युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावना है और देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। तालाबों, पोखरों और नहरों में लगातार पानी की कमी होती जा रही है, जिससे मछलियां पर्याप्त मात्रा में बाजार में नहीं मिलती। ऐसे में मछली पालन व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और भारत में मछली पालन व्यवसाय विकास की ओर बढ़ रहा है। आज भारत के बहुत से किसान भाई मछली पालन करके अच्छी आय कमा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आमदनी का एक बहुत बढ़िया स्रोत बन के सामने आया है। बड़ी संख्या में हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, किसान भाई हैं, इस व्यवसाय की तरफ रुख कर रहे हैं और ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं। इसमें सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को मछली पालन की शुरुआत करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। अब बात आती है कि मछली पालन व्यवसाय की शुरुआत कैसे करें, तो आप अपने जिले के मछली पालन विभाग में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इस व्यवसाय से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठा करके मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मछली पालन व्यवसाय की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार है सुनील चौहान और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी। किसान मित्रों, आजकल हमारे बहुत से किसान भाई अपनी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके अतिरिक्त आमदनी कमा रहे हैं और एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना खुद का स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही बी कीपिंग स्वरोजगार से जुड़े हैं तो ये लोन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई या युवा साथी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सोचते होंगे कि आखिर हम शुरू करें तो खर्चा कितना आएगा शुरुआत में। यदि बात की जाए मधुमक्खी पालन पर आने वाले खर्चे की, तो यदि आप शुरू में 10 पेटी से मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी आपको मुनाफा अधिक होना शुरू हो जाएगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके इस व्यवसाय से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप जरूर अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाइएगा और वहां बात कीजिएगा कि हम मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, तो आपको सारी की सारी जानकारी क्रमबद्ध तरीके से वहां बता दी जाएगी और इसके साथ ही आपको प्रशिक्षण के बारे में भी समझा दिया जाएगा। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना मधुमक्खी पालन व्यवसाय के बारे में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप रविंद्र खालोर और उनके साथियों से ये रागनी सुन रहे थे। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि खेत से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे कि उत्पादन बढ़े, साथ ही जो खेती में लागत आती है उसमें कमी आए। किसान मित्रों, आज के समय में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न उत्पादन की मांग को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके लिए मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग आवश्यक है। उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना आवश्यक है, तभी हमें पता चलता है कि किन पोषक तत्वों की कमी है हमारी मिट्टी में और किन पोषक तत्वों की अधिकता है। मिट्टी का नमूना लेने के बाद उसकी जांच के लिए आप स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक या फिर नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के दफ्तर में जा सकते हैं और वहां जाकर के अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। किसान मित्रों, मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय समय पर मिट्टी की जांच की जाए। जिस तरह स्वस्थ शरीर के लिए सही खान पान का होना बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। खेती से बेहतर पैदावार और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना जरूरी है, और साथ ही मिट्टी की जांच से पता चलता है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की उपलब्धता है और किस पोषक तत्व की अधिकता या कमी है। किसी भी फसल से उन्नत पैदावार के लिए ये जरूरी है कि उस फसल को किस प्रकार की भूमि में उगाया जा रहा है और उस भूमि में किस प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो मिट्टी की जांच करने के बाद ही पता चलते हैं। तो आप कोई भी फसल करें अपने खेत में, लेकिन अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करा लें, ताकि आपको फसल का भरपूर उत्पादन मिल सके। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

परेशान हो रहे थे, शादी हमें करनी है लेकिन दान दहेज के लिए हमारे पास छदाम नहीं। प्रेमी दोस्तों, बिजनौर के सेठ पन्नानाल से दान दहेज के लिए कर्जा लिया और लड़के की तलाश में जिला मुरादाबाद बैरमपुर बस्ती में धर्म सिंह के यहाँ पहुंच गए, जिनके लड़के का नाम नीरज था। और किस तरह से कहने लगे, हम लड़के की तलाश में आए हैं।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो
2: तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

अब तो उर्मिला अपनी ससुराल में पहुंच गई और कई रोज गुजर गए, लेकिन जिसके साथ ब्याही थी नीरज उर्मिला से मिलने के लिए नहीं आए। प्रेमी दोस्तों, ये उर्मिला के लिए सबसे बड़ा वियोग और कलह का कारण बन गया। और एक दिन उर्मिला ने अपनी ननद के हाथों अपने प्राणनाथ को बुलवाया तो यूं कहने लगी, प्राणपति

0: लेकिन आप मेरी एक बात तो सुनो,
1: दो सुना
0: के आप मुझे इतना परेशान मत करो, जो आप कहते हुए है नहीं वो मैं अपने घर जाके अपने माँ बाप से कहकर सारी चीजें दिलवा दूंगी तुम्हें।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है,
0: लेकिन आप मुझे इतना परेशान मत करो।
1: लेकिन विश्वास नहीं होता
0: अच्छा
1: कि सामान मिल जाएगा।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
2: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
1: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
2: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
1: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
2: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
1: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी, और आपके लिए हाजिर हुई हूं कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है हिंसा को नो, और ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। इस कार्यक्रम को स्मार्ट संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना, उन्हें सशक्त करना, ताकि वे इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर और जानते हैं कि महिलाओं से हो रही गैर बराबरी को किस तरह इस कहानी में दर्शाया गया है, और ये हम जानेंगे मधु की इस कहानी में। तो आइए बढ़ते हैं और सुनते हैं ये कहानी।

0: आओ बेटा, आज तो बहुत देर कर दी तुमने आने में।
1: हाँ माँ, आज ना कुछ काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई है।
0: अच्छा, हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ।
1: ठीक है माँ, मैं धो लेता हूँ। माँ, आज क्या बनाया है आपने खाने में?
0: बेटा, तेरी पसंद के करेले और साथ में खीर बनाई है।
1: वाह माँ, मजा आ जाएगा। एक तो आपके हाथों का ये टेस्टी टेस्टी खाना, और ऊपर से ना भूख भी बड़ी जोर से लगी है मुझे।
0: अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तू जरा हाथ मुँह धो ले, फिर मुझसे मिलने आना, कुछ बात करनी है।
1: लो माँ, आ गया मैं। बोलो, क्या बात करनी है?
0: बेटा, बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे।
1: अरे माँ, क्या बोल रही हो, जरा खुलकर बताओ।
0: बेटा, बहू के पांव भारी हैं, पर चाल ढाल से लग रहा है कि इस बार भी उसकी कोख में बेटी ही है।
1: माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हो?
0: बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, लिखवा लो मेरे से, इस बार भी लड़की ही है।
1: माँ, बिना जांच करवाए हम ये कैसे कह सकते हैं, आप ही बताओ।
0: बेटा, मैं यही कहना चाह रही थी कि कल बहू की जांच करवा लेते हैं।
1: पर माँ, ये तो गैर कानूनी है ना, और कुछ ऊंच नीच होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
0: कुछ नहीं होगा, मेरी सहेली है ना वो शोभा, उसने सारा इंतजाम कर लिया है, बस मुझे डर है तो एक बात का।
1: किस बात का डर है माँ?
0: बेटा, बहू मानेगी?
1: अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगी, आप बताओ कब जाना है?
0: कल 10 बजे तुम और बहू शोभा के घर पहुंच जाना, वे तुम दोनों को वहां ले जाएगी।
1: तो माँ, क्या आप नहीं चलेंगी फिर?
0: नहीं नहीं, मैं गुड़िया को संभालूंगी, काफी शरारती हो गई है वो आजकल।
1: मधु, सोगी क्या?
2: नहीं नहीं, गुड़िया को सुलाते सुलाते पता नहीं कब आंख लग गई। आ गए आप, खाना लगा दूंगी।
1: ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए देरी हो गई। खाना तो माँ ने खिला दिया है, चलो तुम सो जाओ, सुबह डॉक्टर के यहाँ भी जाना है हमें।
2: डॉक्टर के पास क्यों?
1: अरे ये पता करना है लड़की है या लड़का।
2: आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, ये गैर कानूनी है।
1: तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, सब इंतजाम हो गया है, कुछ नहीं होने वाला।
2: आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मेरे इस बारे में क्या विचार है, फिर लड़का हो या लड़की, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता।
1: पर मुझे फर्क पड़ता है।
2: क्यों, क्या फर्क है इसमें?
1: वंश आगे कैसे बढ़ेगा, समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी, और तो और मेरी चिता को आग कौन देगा?
2: मैं नहीं मानती इन बातों को, और मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास।
1: तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, यूं तो मुझे अव्वल गुस्सा कभी भी नहीं आता, पर फिर आ जाए तो मैं अपना आपा खो देता हूँ। मुझे मजबूर मत करो तुम हाथ उठाने पर।
2: पर सुन तो लो।
1: बस मुझे नहीं सुनना कुछ भी, तुम सुबह तैयार हो जाना, बस कह दिया सो कह दिया।
0: क्या हुआ बेटा, मान गई बहू रानी?
1: अरे मानती कैसे नहीं।
0: तो ठीक है, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप लोग नाश्ता करके शोभा आंटी के घर चले जाओ, वे आपको डॉक्टर के वहाँ ले जाएंगी। आप लोग वहाँ कुछ नहीं बोलोगे, शोभा आंटी ही सारी बातें कर लेंगी, वहाँ से सभी बातें इशारों में ही होती हैं। अगर वे कहें लड्डू खिलाओ तो समझ लेना कि लड़का है, और अगर वे कहें बर्फी खिलाओ तो समझ लेना कि लड़की है। आ गए आप लोग, क्या कहा डॉक्टर ने?
1: माँ, आपका अनुमान ठीक था, लड़की ही है।
0: हे भगवान, क्या पाप किए थे हमने। ठीक है, बच्चा गिराने की तैयारी करो।
2: माँ जी, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूँ।
0: देखो बहू, अच्छा यही होगा कि तुम प्यार से मान जाओ, बात बढ़ गई तो अच्छा नहीं होगा। मैं पड़ोस में जा रही हूँ भजन कीर्तन के लिए, तुम शाम को अपना फैसला बता देना। बेटा, क्या कहा बहू ने, मानी कि नहीं?
1: बड़ी मुश्किल से मनाया है माँ, मान ही नहीं रही थी।
0: चलो बेटा, मान तो गई ना आखिरकार।
1: पर माँ, वो इस लेडी डॉक्टर के पास ना जाने के लिए मना कर रही है, जाना नहीं चाहती उसके पास।
0: तो फिर बेटा?
1: माँ, उसका कहना है कि एक डॉक्टर है जिसका बहुत नाम है और वो उसको काफी अच्छे तरीके से जानती भी है।
0: ठीक है बेटा, हमने तो पैसे देने हैं, क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर कोई भी हो। तू इस नई डॉक्टर से मिलने के लिए टाइम ले ले, इस बार मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी।
3: मधु, आप अंदर आ जाइए चेकअप के लिए। अरे अरे, आप और माता जी इधर ही इंतजार करिए।
2: अरे मधु, तुम? सीमा तुम? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम इस तरह मिलेंगे, पर तुम तो गायब ही हो गई हो। कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ मैं। मैं जब भी गांव जाती थी तुम्हारे बारे में जरूर पूछती थी, मगर कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ बता नहीं पाया। बस इतना पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है और अंकल आंटी भी गांव छोड़कर तुम्हारे भाई विजय के पास मुंबई चले गए हैं। हाँ सीमा, गांव से बिल्कुल ही नाता टूट गया है। जब से माँ और बाबूजी मुंबई में शिफ्ट हुए हैं तब से गांव जाना ही बंद हो गया है। पर तुम्हें सोशल मीडिया पर भी बहुत ढूंढा मैंने, शायद तुम फेसबुक वगैरह भी नहीं चलाती हो। बस क्या बताऊँ, जिंदगी बस कुछ ऐसे ही हो गई है। पर सच कहूँ मधु, तुमसे मिलकर पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। तुमसे ढेर सारी बातें करनी है मधु, अब तुम इसी शहर में हो तो बातें तो होती रहेंगी। पर पहले ये बता दो कि यहाँ कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी थी मैंने, सब ठीक ही लग रहा था। क्या बताऊं सीमा, बस वही सदियों पुरानी दास्तां, सास और पति को बेटा चाहिए क्योंकि वंश आगे बढ़ाना है और इस बार भी लड़की ही।
4: फिर से लड़की है मतलब?
2: हाँ सीमा, टेस्ट करवाएं।
4: अरे टेस्ट और तुम? आई जस्ट कांट बिलीव दिस।
2: क्या बताऊं सीमा, कोई सुनने को ही तैयार नहीं, बहुत अकेली पड़ गई हूँ।
4: विश्वास नहीं होता कि तुम वही मधु हो जिसने मुझे भी जीना सिखाया था। तुम्हारी वजह से मैं माँ और पिताजी को मना पाई थी मेडिकल कॉलेज जाने के लिए। क्या तुम वही मधु हो जो लड़कियों के हक के लिए पुलिस और प्रशासन से भी अकेले भिड़ गई थी? क्या ये वही तुम हो जिससे सारे रोड साइड रोमियो घबराते थे? ना जाने मेरे जैसी कितनी महिलाओं का जीवन तुमने बचाया है।
2: हाँ सिंह, कभी कभी हालात इतने विवश कर देते हैं। और फिर पिताजी भी कर्ज में डूबे थे और राकेश ने प्रस्ताव रखा था कि वो मेरे पिताजी का सारा कर्जा चुका देंगे अगर पिताजी मेरा हाथ उनके हाथ में देंगे। यूं तो ये सीधी सीधी सौदेबाजी थी, पर काफी सोच विचार करके मैंने हाँ की थी। और एक तो पिताजी को बचाने का भी कोई और तरीका नहीं, और राकेश और उसका परिवार काफी अच्छा था। लेकिन सच पूछो मैं आज भी कहती हूँ कि वो काफी अच्छे लोग हैं, पर पता नहीं क्यों उनके दिमाग पर लड़की का भूत सवार है।
4: मधु, तुम ही कहती थी ना कि अगर हालात से एक बार समझौता कर ले इंसान तो उसे हर बार समझौता करना पड़ता है। और तुम तो ये भी कहती थी कि जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों ही अपराध है। मधु, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी।
2: पर सीमा?
4: पर कुछ नहीं मधु।
2: सुनो सीमा।
4: नहीं मधु, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बस इतना बता दो कि मुझ पर विश्वास है या नहीं।
2: हाँ हाँ, अपने से ज्यादा करती हूँ।
4: तो बस तुम सब मुझ पर छोड़ दो। हाँ, सिर्फ एक बात की इजाजत लेनी है तुमसे।
2: वो क्या?
4: देखो मधु, मैं जो भी करने जा रही हूँ उसमें मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम्हारे पति और सास के सम्मान को कोई ठेस न पहुँचे। मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगी कि तुम्हारे गृहस्थ जीवन में इससे कोई परेशानी ना आए। पर फिर भी थोड़ा ड्रामा तो करना ही पड़ेगा।
2: मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, जो तुम्हें सही लग रहा है वो ठीक है।
4: तुम ही कहती थी ना कि जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो सब ऊपर वाले पे छोड़ दे।
2: हाँ हाँ, कहती तो थी।
4: तो समझ लो कि ऊपर वाले ने आज मुझे ही भेजा है तुम्हारी इस समस्या का समाधान करने के लिए।
2: ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो।
4: जरा इनके पति राकेश जी और माता जी को अंदर भेजना। आइए राकेश जी, बैठिए। माता जी, आप भी बैठिए। तो राकेश जी, आप एक पुत्र की चाहत रखते हैं?
5: जी हाँ डॉक्टर साहिबा, हर कोई रखता है।
4: सुना है आपके पहले भी एक लड़की है?
5: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है।
4: और मधु जी की मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद मुझे ये भी पता चला है कि उनकी पहले भी लड़की हुई थी, पर दुर्भाग्यवश वो जन्म के तुरंत बाद ही भगवान को प्यारी हो गई थी।
5: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने।
4: और अभी फिर से आपकी पत्नी के गर्भ में लड़की है,
5: जी हाँ।
4: यानी कि आप तीनों ही बार अपनी पत्नी को सिर्फ लड़की ही दे पाए हैं।
5: ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा, इसमें मेरा क्या दोष है?
4: अरे क्या आपको नहीं पता कि लड़का या लड़की होना स्त्री के बस में नहीं होता, बल्कि पुरुष का वीर्य इस बात को तय करता है कि लड़की होगी या लड़का।
5: अरे मैं कुछ समझा नहीं।
4: ठीक है मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और एक वाई, और औरत में केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष में होते हैं एक एक्स और एक वाई, और औरत में केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। अब लड़का होगा या लड़की, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि पुरुष के वीर्य में किस प्रकार का क्रोमोसोम अधिक है। यदि पुरुष का एक्स क्रोमोसोम है तो स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से मिलकर वो लड़की का निर्माण करता है, और यदि पुरुष का वाई क्रोमोसोम है तो वो स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से मिलकर लड़के का निर्माण करता है।
5: ठीक है मैं आपकी बात समझ गया हूँ, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए बार बार कोशिश तो करनी पड़ेगी ना मैडम जी।
4: हाँ करनी होगी, पर क्या आपने दो बातों की ओर ध्यान दिया है?
5: कौन सी दो बातें?
4: सुना है आप गणित के प्रोफेसर हैं।
5: अरे हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना है।
4: तो मतलब आप तीन में से तीन बार यानी कि 100% अपनी पत्नी को लड़की ही दे पाए हैं, तो क्या संभावना है कि आप चौथी बार लड़का दे पाएंगे?
5: जी जी जी।
4: और दूसरी बात सुनिए, अगर चौथी बार भी लड़की हो गई तो क्या आप फिर से बच्चा गिरवाएंगे, और फिर पांचवी बार, फिर छठी बार, और आप जानते हैं इसका एक स्त्री के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
0: अरे डॉक्टर साहिबा ये क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रही हो मेरे बेटे को, क्या पहले जमाने में औरतें 8-10 बच्चे नहीं जनती थी?
4: देखिए माता जी, पहली बात तो ये है कि बच्चा जनना स्त्री के लिए गर्व का विषय होता है, साथ ही उसके स्त्रीत्व को भी पूरा करता है। लेकिन बच्चा गिराना न केवल शारीरिक रूप से कष्टदायी है, बल्कि मानसिक रूप से भी शोषण से कम नहीं है। स्त्री एक हीन भावना से ग्रसित हो जाती है, और जबकि उसका कोई दोष भी नहीं होता। और रही बात पुराने दिनों की, तो तब के मापदंड और परिस्थितियाँ भिन्न थी, हमें आज के समय की तुलना उस युग से नहीं करनी चाहिए।

0: और आप सब सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो। जी हाँ, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं आज की कहानी। और इस कहानी में जी हाँ बात हो रही है मधु की, जो कि गर्व से है और उसके परिवार में इस समय हलचल मची है कि घर पे बेटा ही आना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, और अगर बेटी है तो बेटी को गिरा दो। तो श्रोताओं, आज के समय में भी जहां लड़का और लड़की एक समान समझे जाते हैं, जहां पर दोनों लोग बराबरी का हक समझते हैं और बराबरी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस समय में भी आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी उसी पुरानी मानसिकता से जूझ रहे हैं। तो बहुत आवश्यक है कि हम अपनी मानसिकता बदलें और ये समझें कि समय के साथ बदलाव बहुत आवश्यक है, और अगर नहीं बदलेंगे तो नुकसान हमारा ही है। तो जी हाँ, इसी कहानी का अगला अंक हम आपके लिए लेकर आएंगे जल्द ही, और साथ ही उस कड़ी में जानेंगे कि किस तरह से मधु की कहानी में अगला मोड़ आएगा और किस तरह से जिंदगी में जो चीजें हैं वो बदलेंगी, और सब कुछ ठीक होता है ये नहीं, ये भी हम जानेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने
1: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी

0: प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का।

इसी के साथ अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का, यानी आज हम सुनेंगे मधु की कहानी का दूसरा अंक। और आज इस अंक में जानेंगे कि मधु के जीवन में किस तरह नया मोड़ आएगा और वो किस तरह अपने परिवार को समझा पाएगी कि बेटा और बेटी एक समान है। और बेटा और बेटी कोई भी आए जीवन में सिर्फ खुशियां ही देते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ लड़का ही हो और लड़की ना हो। तो इस विषय में, इस कहानी पर आज डालते हैं पूरी तरह से रोशनी और जानते हैं कि क्या नया मोड़ आता है और किस तरह से कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। अब ये अंजाम खुशी का है या गम का होगा, ये तो कहानी के अंत में ही पता चलेगा। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी रेडियो गुंजन के साथ, गूंज अपने पंथ।

0: देखिए डॉक्टर साहिबा, हम आपका भाषण सुनने नहीं आए हैं। ना जाने क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो मेरे बेटे को। सीधी सीधी बताओ, बच्चे को गिराओगी या नहीं? शहर में और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे डॉक्टर हैं और बहुत सारे पुलिस स्टेशन भी हैं।
0: क्या क्या पुलिस स्टेशन? क्या मतलब है तुम्हारा?
1: अरे एक तो आप गैर कानूनी काम करते हो, फिर मुझसे ये भी पूछते हो कि क्या मतलब है मेरा।
0: अरे डॉक्टर साहिबा, कौन सा गैर कानूनी काम किया हमने?
1: अब इतने भी अनजान मत बनिए, क्या आपको नहीं पता बच्चे का जेंडर पता करना गैर कानूनी है?
0: हम तो ये सब केवल इसलिए कर रहे हैं कि हम दूसरा बच्चा नहीं चाहते।
1: माताजी, आप सबकी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, इसलिए बात बदलने की कोशिश मत कीजिए अब।
0: अरे तुम डॉक्टर हो या कोई षड्यंत्रकारी? ऐसे कोई बातें रिकॉर्ड करता है क्या?
1: जी नहीं, मैं तो डॉक्टर ही हूँ, पर क्या करूँ, मेरा पेशा ही कुछ ऐसा है, ये सब करना पड़ता है। और हाँ एक बात और बता दूँ, इस एरिया की DCP मेरी छोटी बहन है, तो अब आप चक्की पीसने के लिए तो तैयार हो जाइए।
0: अरे अरे डॉक्टरनी साहिबा, देखो डॉक्टरनी जी, आप मेरी बेटी की उम्र की है, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर रही जो दुनिया नहीं करती। ये मैं इसलिए नहीं कर रही कि मधु मेरी बहू है। सच मानो, अगर मेरी बेटी भी ऐसी परिस्थिति में होती तो मैं उसको भी यही करने को कहती। भगवान जानता है मैंने मधु को हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है, चाहे तुम मधु को पूछ लो।
1: माँ जी ये बात तो मैं जानती हूँ, और मधु मुझे ये बात बता भी चुकी है, और वह आपकी और राकेश जी की काफी इज्जत भी करती है। पर माँ जी अब एक और सच सुन लीजिए, मैं और मधु बचपन की सहेलियाँ हैं। सहेलियाँ क्या, बस बहनें ही समझिए। किस्मत ने हमें कुछ वक्त के लिए दूर कर दिया था, पर आज अचानक हम मिल गए हैं, और सच पूछिए तो इस बात के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ।
2: तो क्या आप दोनों को सच में एक दूसरे के बारे में नहीं पता था?
1: अरे राकेश जी, क्या आपको लगता है कि अगर मधु को पता होता तो वो आपको ना बताती?
2: नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करती वो, मुझे उस पे पूर्ण विश्वास है। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए डॉक्टर साहिबा, अब आप ये बताइए कि अब हम सबको क्या करना चाहिए।
1: देखिए राकेश जी और माता जी, ये आपके घर का निजी मामला है, और मैं एक डॉक्टर होने के नाते और मधु की सहेली होने के नाते सिर्फ अपनी राय ही दे सकती हूँ।
0: बेटी हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे को गिरा दिया जाए।
1: माता जी सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सख्त रवैया अपनाना पड़ा, मगर ये इसलिए था ताकि आप मेरी बात सुने और समझे।
0: कोई बात नहीं, शायद आप अपनी जगह पर ठीक हैं, पर मैं तो फिर भी भलाई ही चाहती हूँ।
2: पर माँ हमें डॉक्टर जी की बात भी तो सुन लेनी चाहिए, आखिर वो भी तो हमारा भला ही चाहती हैं।
1: धन्यवाद राकेश जी। देखिए माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि सारी बात खत्म होने के बाद अगर आप फिर यही चाहेंगी तो मैं यही करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे होते मधु को कहीं और जाना पड़े, मैं खुद उसकी देखभाल करना चाहती हूँ।
2: ठीक है डॉक्टर साहिबा, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं।
1: चलिए राकेश जी, एक अच्छी बात तो हुई कि आप समझ गए कि लड़की या लड़का होने के लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार होते हैं, स्त्री नहीं।
2: जी बिल्कुल समझ गया।
1: अच्छा इस बात को छोड़िए, ये बताइए कि बुढ़ापे में आप किसका साथ चाहेंगे?
2: निसंदेह अपनी पत्नी का।
1: तो क्या आप एक स्वस्थ साथी चाहेंगे या एक ऐसा साथी जो अस्वस्थ हो?
2: जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या बताना चाह रही हैं आप?
1: आप क्या समझते हैं कि एक औरत इंसान नहीं होती? बार बार गर्भ धारण करना, बच्चा जन्ना, बच्चा गिराना, इन सब बातों से उसके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता।

0: सकता?
1: हाँ हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि आपको लड़का ही क्यों चाहिए?
2: वंश भी तो आगे चलाना है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आपके पति का नाम क्या था?
2: जी रामलाल।
0: और उनके पिता यानी आपके ससुर जी का क्या नाम था?
2: जी राधेश्याम।
0: और उनके पिताजी का?
2: जी ये तो याद नहीं मुझे।
0: थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, याद आ जाएगा।
2: जी नहीं, नहीं याद आ रहा।
0: तो फिर किस वंश की बात कर रही हैं आप, जहां एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का नाम तक याद नहीं रहता? माताजी, ये सही है कि वंश औलाद से चलता है, पर लायक औलाद से, नालायक से नहीं। और साथ ही गौर से सोचिए, हमारे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिनको हम हमेशा याद रखते हैं। लक्ष्मीबाई हो, महारानी पद्मावती हो, मंगल पांडे हो, सरोजनी नायडू हैं, महाराणा प्रताप हैं, या फिर महात्मा गांधी हैं। इन सब को हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इन्होंने जीवन में अच्छा कार्य किया है।
2: अरे ये तो आपने बड़े बड़े नाम ले दिए इतिहास के पन्नों में से। हम छोटे लोग हैं, हमारा समाज अलग है।
0: माँ जी, समाज व्यक्ति के लिए होता है। चलिए आप अपने आसपास ही देख लीजिए, ऐसी कौन सी होनहार बेटी है जिस पर उसके माँ बाप गर्व नहीं करते? और ठीक इसके उलट, ऐसा कौन से माँ बाप हैं जो कि अपने नालायक बेटों की हरकतों पर शर्मिंदा नहीं होते?
2: पर आप ये मानकर चल रही हैं कि बेटी लायक ही होती है और बेटा नालायक?
0: जी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। बेटा हो या बेटी, कोई भी लायक या नालायक हो सकता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वंश का नाम बेटे या बेटी के लायक या नालायक होने पर निर्भर करता है, ना कि उसके लड़के या लड़की होने पर।
1: हाँ माँ, बात तो ठीक है। आज हमारी दीदी और आपकी बेटी अपने क्षेत्र में कितना नाम कमा रही है। माँ आपको एक बात याद है, राष्ट्रपति मेडल जब दीदी को मिला था तो वो अपने हर स्वागत समारोह में पहला नाम पिताजी का लेती थी, और पिताजी जिंदा होते आज तो उनको कितना गर्व महसूस होता माँ, सोचो जरा।
2: हाँ वह तो ठीक है, पर लड़की होती तो आखिर पराया धन ही है ना, बेटा तो हमेशा साथ रहता है।
0: माँ जी जरा गौर कीजिए, आज के समय में कितने ऐसे लड़के हैं जो शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, अक्सर शादी के बाद अलग से घर ले लेते हैं, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी के चक्कर में दूसरे शहर या विदेश नहीं जाते। माँ जी मैं डॉक्टर होने के साथ साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और कई वृद्धाश्रमों से जुड़ी हुई हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों से मिलने उनके बेटे आए ना आए, पर बेटियाँ नियमित तौर पर आती हैं और उनकी छोटी से छोटी जरूरत का भी पूरा ध्यान रखती हैं।
1: माँ वैसे बात तो सही है, पिताजी के जब आखिरी 2 वर्ष बचे थे तब मैं तो विदेश में था। दीदी विवाहित होने के बावजूद भी महीने में कम से कम 3 से 4 चक्कर लगा जाती थी, और माँ सच पूछो तो पिताजी भी उन पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। माँ तुम्हें कुछ याद है कि नहीं?
2: हाँ हाँ बेटा मुझे याद है।
0: जी माताजी, वैसे तो मैं अपनी निजी जिंदगी की चर्चा किसी से करना पसंद नहीं करती, पर क्योंकि ये मधु का परिवार है और आप उसके करीबी हैं, तो इस नाते मेरा भी रिश्ता जुड़ गया है, इसलिए मैं आपको अपने माता पिता के बारे में एक बात बताती हूँ। मेरा एक भाई है जो कि बहुत ही अच्छा है, जान छिड़कता है, पर अपने परिवार के साथ USA में सेटल है। कई बार वो मम्मी और पापा को अपने साथ लेकर भी गया है, वहाँ पर माँ और पिताजी का मन नहीं लगता, सो वो वापस लौट आए और अब वो मेरे साथ रहते हैं। और सच कहूँ तो मेरे पति को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है, वो तो बहुत खुश हैं कि चलिए घर पर कोई बड़ा तो है। और उधर USA में मेरी भाभी का कोई भाई नहीं है, इसलिए उनके माता पिताजी उनके साथ रहते हैं। तो माताजी ये सब किस्मत की बातें हैं और दाना पानी की भी।
2: सीमा मुझे लगता है हमने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें मधु जैसी बहू मिली और तुम जैसी उसकी सहेली।
1: चलिए सीमा जी बात को ना यही खत्म करते हैं, और हम इस बेटी को भी जन्म देंगे, पर सीमा जी मेरी 2 शर्तें हैं।
0: कहिए राकेश जी क्या शर्तें हैं?
1: पहली ये कि आपने कहा कि मधु आपकी बहन है
0: जी,
1: तो इस नाते से आगे से आप मुझे अब जीजा जी कहेंगी?
0: हाँ जरूर, 1000 बार कहूँगी।
1: हमारी दूसरी बेटी की जन्म की पार्टी पर सारी की सारी तैयारियाँ तुम करोगी, और तो और उसका नामकरण भी तुम करोगी।
0: जी बिल्कुल जीजा जी, मुझे मंजूर है। और हाँ माँ जी, मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की है।

0: नमस्कार। अक्सर बात होती है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन जब एक बच्ची महिला अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाती है तो समाज की कड़वी सच्चाई सामने आती है कि बदलाव सिर्फ एक साथ काम करना या कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना नहीं है, बल्कि मानसिकता में बदलाव होना असली विकास है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से हम सबको कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी और आने वाले समय में हम सब इस बदलाव का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुलाकात होगी जल्द ही। तब तक आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: आकाश खुला, धुंध छंटी और हमने बहुत देखा,
2: बादल, चांद, पर्वत और नीला आसमान,
1: पर हम में से कितनों ने देखे चोट के वो नीले निशान,
2: कितनों ने देखी एक सच बयां करती वो बेबस मुस्कान।
1: शोर हटा सन्नाटे दिन की धूप में, खामोशी से लेट कर,
2: और हमने बहुत कुछ सुना,
1: चिड़ियों को, चहचहाहट को,
2: हवा को, सरसराहट को,
1: बूंदा बूंदी को, बरसात को,
2: गरजती बिजली की डांट को,
1: कितना कुछ सुना,
2: पर हम में से कितनों ने सुना
1: उस दर्द को, उस कराह को,
2: दीवारें चीर कर आती उस आह को।
1: शायद हमने सुनकर भी नहीं सुना,
2: शायद हमने देखकर भी नहीं देखा,
1: लेकिन कब तक हम घरेलू हिंसा से नजरें चुराते रहेंगे,
2: पर कब तक,
3: पर कब तक,
4: पर कब तक।
2: आओ आवाज उठाएं,
1: आओ आवाज उठाएं,
3: आओ आवाज उठाएं,
4: हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाएं। अगर आप भी घरेलू हिंसा से परेशान हैं, तो सहायता व परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन, कॉल करें 7018-12909। नंबर फिर से याद रखें 70-187-12909।
5: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: अरे भैया रामू।
1: हाँ भैया श्यामू।
0: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
1: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
0: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6000 रुपए में हो रही है।
1: अच्छा तो भैया लेके चल, अब ही चल।
2: तो अब ही चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
2: सुनते हैं आज का विचार जिसे हमें भेजा है आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार और आयुष जंघेल के साथ साथ नंदिनी जंघेल जी ने।
0: लिखते हैं, हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है
2: जी।
0: हर असफलता में छुपी होती है एक सीख जो हमें और अधिक बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
2: क्या बात है, सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। और इसके साथ साथ हमें पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिम्पल देवांगन।
0: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
2: ग्राम पुतकी कला कवर्दा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: अनंत आकाश है, कोई मील का पत्थर या ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, और विमान उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और हाँ, सुरक्षित अपनी मंजिल पर ये पहुँच जाता है।
2: क्या आपने कभी ये सोचा है कि विमान को दिशा निर्देश कैसे प्राप्त होते हैं और कैसे रात हो या दिन सही दिशा में उड़ता है?
0: तो आज हम आपको इस रोचक प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। श्रोताओं, हर हवाई जहाज को जमीन पर स्थित एयर ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है
2: जी।
0: वे बताते हैं कि जहाज को कितनी ऊंचाई पर उड़ना है,
2: किस रास्ते से जाना है और कहां दिशा बदलनी है
0: और
2: कब उतरना है। ये सब रेडियो संपर्क के द्वारा होता है।
0: श्रोताओं, आधुनिक विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है। ग्राउंड स्टेशन या नियंत्रण केंद्र अब रडार प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं
2: जी।
0: वे लगातार देखते रहते हैं कि जहाज कहाँ है, उसकी गति क्या है। वे जहाज के पायलट को ये संदेश भी देते हैं कि आगे का मौसम कैसा है और जहाज की गति कितनी रखनी है।
2: इससे जहाज बिल्कुल सही मार्ग पर चलता है। तो ये थी जानकारी आज की। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, जहाज को दिशा निर्देश कौन देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जहाज को दिशा निर्देश कौन देता है?
0: हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, एक्स, लिंक्डइन और इंस्टा पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं आज के विशेष रेडियो कार्यक्रम जो शिक्षा तो देते ही हैं लेकिन मनोरंजन से भी भरपूर हैं।
2: बिल्कुल।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।
2: प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसका संदेश है, कभी भी किसी को छोटा और तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कोई भी कभी भी हमारे बहुत काम आ सकता है।
3: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।
4: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलग रूम है, चल चल।

0: और अब इस कार्यक्रम के बाद प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलेन केलर।
1: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध दिव्यांग अमेरिकी लेखिका और समाज सेविका हेलेन केलर के जीवन और समाज सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है। विशेषकर इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांग वर्ग को प्रेरणा दी गई है और संदेश दिया गया है कि वे अपना मनोबल बनाए रखें।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलेन केलर।
1: हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलेन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलेन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलेन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलेन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
4: हेलेन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलेन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
4: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ।
1: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
0: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहां तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
4: मिसेस केलर
2: जी,
4: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है, संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं, आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
2: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: तुम पिया नो
1: शाबाश हेलेन। मिस सलीमन, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं?
2: अरे नहीं नहीं, मिसेस
1: मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है। मिस सलीमन,
2: मिसेस केलर, हेलेन
1: बोल सकती है।

सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन

0: फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलेन केलर। अब सुनते हैं अंग्रेजी में एक बेहद मधुर गीत, और इस गीत का शीर्षक है आई हैव ए ड्रीम।
2: ये गीत एक विद्यार्थी के मन की आवाज है।
1: ये गीत बताता है कि एक विद्यार्थी दुनिया से,
2: समाज से,
1: मित्रों से,
2: माता पिता और शिक्षकों से क्या उम्मीद करता है।
1: जी हाँ, तो आइए सुनते हैं ये गीत आई हैव अ ड्रीम।
3: फ्रेंड्स, द सॉन्ग ब्रिंग्स टू यू द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन विद एन अपील टू बी अंडरस्टूड व्हाट दे डिजायर। वी डेडिकेट दिस सॉन्ग टू अवर एस्टीम्ड टीचर्स, रिस्पेक्टेड एल्डर्स and beloved parents.
4: Dear friends, every child is born with quests and questions. For a child, there are not only seven wonders in the world, but there are more than 7 million wonders. A child is curious, overladen with questions and queries as to why something happens.
5: Mama, why the sky is so blue?
6: Oh, foo, beta. Go and find the answer in your book.
5: Mama. Papa, why the grass is green but rose is red?
7: Grass is green, rose is red. Go and ask your teacher.
5: But Papa. Papa, my car is broken. Can I open and see how it works?
7: You broke it again? You are so hopeless.
6: Why the smell of soil is so sweet when it rains?
8: Oh, foo. Don't bother me, okay?
6: But, mommy.
4: Dear friends, such conversations are very common in every home. When the child asks, never stop him from asking questions. By doing so, we kill their curiosity and courage. Remember, every child has a dream, and their dreams are to be understood. So we have this song to share with you. I have a dream.
9: I have a dream.
10: I have a dream.
11: I have a dream.

0: Dear friends, do we try to understand our children patiently? We need to peep deep into their little hearts and to have faith and trust in them. By doing so, we will ensure to make them what they are indeed.
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, लेकिन अब समय अनुमति नहीं देता कि हम आज के कार्यक्रम में आगे चलें। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इस आशा के साथ कि अगले कार्यक्रम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस समय अजीत को और
2: विमलेश को
1: आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाए।
3: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: शारदा स्कूल ऑफ

इंडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
3: एफएम। क्या आपको बुखार आ रहा है?
4: ये बुखार डेंगू चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
3: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
4: सिर हाथ पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
3: बुखार के दौरान पानी शिकंजी ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
4: हल्के सूती कपड़े पहनें और कमरे को ठंडा रखें।
3: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
4: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
3: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
4: याद रखना बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: धरती मेरी धरती।

धरती मेरी धरती, लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 24वीं कड़ी, कभी जानू कभी ना जानू। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि जब सतही जल स्रोतों से पर्याप्त शुद्ध जल नहीं मिलता तो हम भूमिगत जल पर आश्रित हो जाते हैं। क्या कारण है कि दिनों दिन भूगर्भ जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है? तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 24वीं कड़ी, कभी जानू कभी ना।

0: भाई पता है मुझे सब पता है।
1: मानव, ऐसा हो सकता है कि किसी को सब कुछ पता हो?
0: क्यों नहीं हो सकता, मैंने सागरों महासागरों के बारे में जान लिया है, कैसे पानी भूमध्य रेखा से ध्रुवीय प्रदेशों तक पहुंचता है।
1: अरे मानव, बस यही है क्या समझने को?
0: दीदी मुझे और भी बहुत कुछ पता है। ठंडा ज्यादा खारा पानी नीचे बैठता है क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है, और महासागर में कैसे ऊर्जा का संचरण होता है, कैसे घनत्व में भिन्नता होती है, कैसे पोषक तत्वों का बंटवारा होता है, लगभग सभी कुछ तो पता है मुझे।
1: लगभग ना, सब कुछ तो नहीं। सुन मानव, ये अच्छी बात है कि तुझे इतना कुछ पता है और याद भी रहता है, पर मानव जीवन में सीखना सिखाना तो चलता ही रहता है।
0: वो तो ठीक है, पर
2: सृष्टि किसे सिखा पढ़ा रही है?
1: और किसे विवेक भैया, इस मानव को सुबह से सुन रही हूँ मैं। इसका दोस्त हैप्पी आया था, कुछ भी कहे तो मानव का जवाब पता है, इसे सब पता है, अपने ज्ञान की शेखी बघारना इसे खूब आता है।
2: क्यों भाई मानव, अभी तो हमें सब पता नहीं चला और तुम अभी से सब जान गए?
0: सब नहीं विवेक भैया, मैं तो महासागरों और वायुमंडल के संचरण की बात कर रहा था, उसके बारे में तो मुझे सब कुछ पता ही है।
2: मानव सब कुछ नहीं, हाँ बहुत कुछ। अच्छा चलो मैं तुम्हारा ज्ञान परख लेता हूँ, बताओ मानव।
1: रहने दो विवेक भैया, अभी इस्लाम अंकल आ तो रहे हैं, वही पूछेंगे अपने प्यारे मानव से सारे सवाल।
0: क्या इस्लाम अंकल आ रहे हैं? अरे वाह, उन्होंने तो कहा था कि मैं बहुत होशियार हूँ।
2: उनका इंतजार तो होगा ही।
0: बिल्कुल,
1: लगता है मम्मी पापा इस्लाम अंकल को लेकर आ गए। नमस्ते अंकल।
3: नमस्ते सृष्टि बेटी, और कैसे हो विवेक?
2: बिल्कुल ठीक अंकल।
4: भाई साहब आप बैठिए, मैं जल्दी से चाय बना कर लाती हूँ।
5: वसुधा कुछ नाश्ता भी ले आना।
6: हाँ हाँ बिल्कुल।
5: हाँ इस्लाम बैठो बैठो। हाँ, अरे मुंबई से दिल्ली काफी लंबा सफर है। हाँ, बैठो आराम करो।
6: पीजिए अंकल पानी।
3: धन्यवाद बेटी। अरे ये मानव कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं मुझसे फिर से तो डरने नहीं लगा?
1: नहीं अंकल, उसका डर तो जब आप पिछली बार आए थे तभी दूर हो गया था।
3: अच्छा।
1: लेकिन महासागरों वायुमंडल के संचरण को जानकर ना वो अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा।
2: हाँ,
1: है
2: अंकल, उसे लगता है कि उसे सब पता है।
3: चलो भाई उससे कुछ हम भी सीख लेते हैं, पर वो है कहाँ?
1: पता नहीं, यही तो था। हाँ, अभी मानव।
4: अरे सृष्टि क्यों चिल्ला रहे हैं? मानव शांति से अपने कमरे में पढ़ रहा है। भाई से भी चाय लीजिए ना। बिल्कुल, कैसी बातें कर रहे हैं
5: हम? अपना ही घर है भाई।
0: नमस्ते अंकल।
5: ओह मानव।
3: अरे अरे मानव, नमस्ते भाई नमस्ते। पर आप थे कहाँ? अरे देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए।
0: क्या लाए हैं अंकल?
3: दिखाता हूँ। ये देखो
1: ग्लोब। ग्लोब?
3: हाँ बेटे ग्लोब, और ये मैं अपनी जर्मनी की यात्रा से लाया हूँ। ये हमारी धरती के, मेरा मतलब असली धरती के बहुत करीब है।
0: अरे वाह,
5: अच्छा तो लग रहा है।
0: कितने सुंदर रंग है ना। हाँ। और कितना बड़ा भी है, और इसका तो स्टैंड भी है। अंकल ये अपने स्टैंड पर कुछ टेढ़ा नहीं लगा हुआ?
3: अरे हाँ ये ग्लोब तो कुछ टेढ़ा है। क्यों सृष्टि तुम्हें क्या लगता है?
1: क्या अंकल, सही तो है, ग्लोब हमारी धरती का ही तो मॉडल है। जब धरती एक निश्चित कोण पर झुकी है तो ग्लोब भी झुका होगा।
3: शाबाश सृष्टि बेटी, शाबाश। हाँ मानव, तो अब समझ आया कि सृष्टि ने क्या कहा। इसी कोण पर झुके होने के कारण धरती पर अलग अलग मौसम बनते हैं।
0: हाँ अंकल पता तो है, इसी कोण के कारण सर्दी और गर्मी आती है। वो पता तो है, बस जरा दिमाग से उतर गया।
2: मानव को तो सब पता है।
5: भाई इस्लाम, बच्चों से बातचीत तो चलती रहेगी, अब तुम थोड़ा आराम कर लो।
3: नहीं नहीं सूर्य प्रकाश, बच्चों से बातचीत करना आराम ही तो है।
0: क्यों? हाँ पापा, बातें भी हो जाती हैं और आराम भी।
4: तुम्हें तो मजे आएंगे ही, तुम थोड़े ना मुंबई से आए हो। चलो अंकल को आराम करने दो, शाम को बातें करना ठीक है?
3: अरे रहने दो भाभी, कौन सा रोज रोज मिलते हैं, और वैसे भी मानव से अभी बहुत कुछ सीखना है।
4: आप भी भाई साहब।
0: मुझसे क्या सीखना है अंकल?
1: क्यों, तुझे तो सब पता है, इसीलिए अंकल तुझसे कुछ सीखना चाहते हैं।
0: नहीं वो तो मैं सिर्फ महासागर और वायुमंडल के आपसी तालमेल की जानकारी की बात कर रहा हूँ।
2: हाँ, हाँ, मानव उसी के बारे में समझा देना। क्यों?
0: हाँ, हाँ, इसके बारे में तो मुझे सब मालूम है।
3: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो ये बताओ, अगर मैं इस पानी से भरे गिलास को हल्का सा टेढ़ा करूं तो क्या होगा?
0: गिलास टेढ़ा हो जाएगा और क्या।
3: हाँ भाई, गिलास तो टेढ़ा होगा ही, पर उसमें रखे पानी का क्या होगा?
0: पानी अगर बाहर नहीं गिरा तो गिलास तो टेढ़ा रहेगा और पानी जमीन के समतल बना रहेगा।
3: अरे वाह, शाबाश मानव। यानी तुम ये मानते हो कि तल कैसा भी हो, पानी की सतह समतल बनी रहती है, यानी एक बराबर रहती है। पानी में या कहें सभी तरल पदार्थों में ये गुण होता है कि उनकी ऊपरी सतह हमेशा बराबर बनी रहती है। भले ही गिलास में कुछ कंकड़ पत्थर डालो तो देखोगे कि तल तो उबड़ खाबड़ हो गया है, परंतु पानी की सतह समान और शांति बनी हुई।
2: अब देखो माना, समुद्र तल में इतनी खाइयां हैं, पहाड़ हैं, पर सतह का पानी बराबर ही रहता है।
1: हाँ, हवा से लहरें बनती हैं, पर फिर भी पानी एक समान रहता है।
0: हाँ, तभी तो धरती गोल नजर आती है, क्योंकि धरती के गहरे गड्ढों को पानी ने भरकर सतह के बराबर कर दिया है।
3: तो भाई मानव, तुम ये मानते हो कि पानी अपने को बराबर बनाने में माहिर है, ठीक?
0: बिल्कुल ठीक अंकल, ये सब तो मुझे पता है।
1: देखा अंकल, मानव को सब पता है, जीनियस है हमारा मानव।
3: जीनियस तो है। अच्छा मानव, अगर मैं कहूँ कि इसी धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ महासागर का पानी बाकी क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा ऊपर उठा होता है, मानो तुम्हें तो पता ही होगा भाई।
0: हाँ अंकल, पता है, ऐसा होता तो है।
3: हाँ ऐसा होता है, मगर ऐसा क्यों होता है मानव?
1: बता मानव, बता, तुझे तो सब पता है।
5: वैसे इस्लाम, क्या वाकई ऐसा होता है?
3: हाँ, सूर्य प्रकाश, ऐसा होता है। शायद मानव को भी पता है, लेकिन अभी उसे याद नहीं आ रहा।
2: यही होगा, है ना मानव? अंकल, मेरे ख्याल से आप वॉकर संचरण की बात कर रहे हैं ना?
3: अरे वाह वाह वाह, शाबाश विवेक, शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वॉकर संचरण की बात ही कर रहा हूँ।
0: ये वॉकर संचरण क्या है?
1: क्या जीनियस मानव को वॉकर संचरण नहीं पता? अरे ये कैसे?
2: नहीं सृष्टि, पता होगा इसे, शायद सब कुछ जानने वाले मानव साहब थोड़ा भूल गए होंगे। क्यों मानव?
0: क्या भैया, बताओ ना, ये वॉकर संचरण क्या है?
3: मैं बताता हूँ। भूमध्य रेखा पर स्थित प्रशांत महासागर के भाग का मौसम ज्यादातर तो सामान्य ही रहता है, यानी सूरज की गर्मी से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पश्चिमी तट के आसपास के महासागर का पानी गर्म हो जाता है,
2: जिस कारण गर्म और नम हवा की भारी मात्रा हजारों फीट ऊपर उठती है, जिससे महासागर की सतह पर कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है।
3: हाँ।
2: और जब ये गर्म नमी से भरी हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है, तो ये हवा में समाई नमी बारिश के रूप में बरसती है, और यही बारिश उस क्षेत्र में मॉनसून की वर्षा कहलाती है।
0: हाँ हाँ भैया, ये तो मुझे भी पता है कि गर्म नम हवा ऊपर उठती है और फिर बारिश होती है, इतना तो मैं जानता हूँ।
1: हमारा मानव सब जानता है, तो फिर बता वॉकर संचरण।
0: बस यही नहीं पता।
1: तो चुपचाप सुन।
3: हाँ तो भाई मानव, ये नमी से भरी गर्म हवा जो बरसकर शुष्क और हल्की हो चुकी है, ऊपरी वायुमंडल में मौजूद हवाओं की दिशा के कारण पूर्वी दिशा की ओर बढ़ चलती है। ऊंचाइयों पर चलते या कहें बहते बहते यह हवा और ठंडी होती जाती है और इसका घनत्व भी बढ़ता जाता है।
2: और जब ये हवा अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुंचती है, तब तक ये इतनी ठंडी और भारी हो चुकी होती है कि नीचे की ओर बहने लगती है, जिससे अमेरिका के पश्चिमी तट पर पानी की सतह में उच्च दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है।
3: बहुत अच्छे विवेक, शाबाश।
5: वेरी गुड विवेक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
2: कह लीजिए,
5: आई एम लाइक फादर लाइक सन।
3: क्या बात है। अच्छा, तो फिर यही नीचे आई हवा व्यापारिक हवाओं के रूप में वापस ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की ओर चल देती है।
0: लेकिन अंकल, वॉकर संचरण कहाँ गया?
3: बताता हूँ मानव। देखो, ये जो महासंचरण का लूप बना, यानी ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से पूरब की ओर हवा का बहाव और निचले अक्षांश पर पूरब से पश्चिम की ओर चलने वाली हवा के इस पूरे संचरण को वॉकर संचरण कहते हैं, समझे?
0: समझा।
4: पर भाई साहब, इसे वॉकर संचरण क्यों कहते हैं?
5: अरे वाह, वसुधा को भी वॉकर संचरण में पूरी रुचि है।
2: अरे मम्मी मैं बताता हूँ, असल में इस संचरण का नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक सर गिलबर्ट वॉकर के नाम पर रखा गया।
4: अच्छा।
2: जिन्होंने 1920 के दशक में इस प्रक्रिया का अध्ययन किया था।
4: अब समझी।
0: और उन्हीं के नाम पर कहलाया वॉकर संचरण। समझ गया। अब तो मैं सब कुछ जानता हूँ।
5: फिर से।
0: पर अंकल, आप बता रहे थे कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पानी एक तरफ कुछ उठा रहता है, यानी समतल नहीं रहता, ऐसा कहाँ होता है?
1: लो, अभी कह रहा था कि सब जानता हूँ और तुरंत सवाल भी पूछने लगा।
4: चलो मैं भी आई।
3: हाँ तो मानव, इसी वॉकर संचरण में जब ये व्यापारिक हवाएं निचले अक्षांश पर पश्चिम की ओर बहती है ना, तो ये महासागर की ऊपरी परत के गर्म पानी को भी अपने साथ धकेलती है, जिस कारण गर्म पानी इंडोनेशिया के पास जाकर जमा होने लगता है।
2: और जानते हो मानव, यहाँ हवा की गतिविधियों और तापीय फैलाव के कारण इंडोनेशिया के तट के पास प्रशांत महासागर का स्तर मेक्सिको के पश्चिमी तट की तुलना में करीब 18 इंच यानी 1.5 फीट ऊपर होता है, जानते हो?
0: अच्छा, आप समझा
2: आखिरकार। अच्छा इस्लाम अंकल, आप एक बात बताइए।
3: हाँ, पूछो बेटा।
2: ये जो गर्म पानी की ऊपरी परत को व्यापारिक हवाएं अपने साथ धकेल ले जाती हैं, इसी के कारण ही तो पेरू और इक्वेडर जैसे पूर्वी प्रशांत में स्थित देशों के तट के पास के पानी में मछलियों की खूब भरमार होती है ना?
3: हाँ विवेक बेटा।
0: पर ऐसा क्यों होता है अंकल?
1: अरे मानव जी, आपको नहीं पता? हा? ऐसा कैसे?
3: मैं बताता हूँ। पूर्वी प्रशांत खास तौर से इक्वेडर और पेरू में समुद्र की सतह के नीचे का ठंडा पानी सतही पानी के हटाए जाने पर उसकी जगह ले लेता है, यानी जब व्यापारिक हवाएं अपने बहाव के साथ पानी को पश्चिमी दिशा मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की ओर ले जाती हैं, तो पूर्वी छोर पर मौजूद समुद्र का गहरा पानी ऊपर की ओर उठता है।
2: अब ठंडा पानी सागर की गहराइयों से उठकर ऊपरी सतह पर गर्म पानी की जगह लेने आता है, जो अपने साथ लाता है सागर की गहराइयों में मौजूद पोषक तत्वों को।
1: और हाँ। इन पोषक तत्वों पर खूब समुद्री जीव पलते हैं, है ना भैया?
2: सृष्टि बिल्कुल ठीक। और इसीलिए इक्वेडर, पेरू आदि देश मछली उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष पे शामिल है।
0: समझ गया कि क्यों पश्चिमी प्रशांत का पानी 18 इंच के ऊपर उठा रहता है और क्यों पूर्वी प्रशांत के देशों में मछलियों की भरमार होती है। देखा, अब तो मुझे महासागरों के बारे में सब कुछ पता चल ही गया है ना?
3: भाई सब कुछ तो शायद खुद समुद्र को भी नहीं पता। भाई मानव तो बस अपनी जिज्ञासा में ज्ञान अर्जित करने पर लगा रहता है।
0: थैंक यू अंकल।
1: अरे इस्लाम अंकल तुझे नहीं कह रहे थे, बल्कि मानव यानी मनुष्य की बात कर रहे थे।
3: अच्छा अच्छा। हाँ तो मानव, तुम जानते हो कि कई बार ऐसे कई कारणों से जो वैज्ञानिक अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, ऐसा भी होता है कि कुछ वर्षों के अंतराल में ये व्यापारिक हवाएं या तो कुछ कमजोर पड़ जाती हैं या फिर बिल्कुल ही रुक जाती हैं। फिर बता सकते हो कि क्या होता है?
0: अंकल, फिर ये जो पानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के तटों पर इन व्यापारिक हवाओं के कारण जमा होता है, हा? वो रुक जाएगा और ये गर्म पानी पेरू या इक्वेडोर के तटों पर ही बना रहेगा।
3: शाबाश मानव, बहुत ही अच्छे।
1: वाकई में मानव है तो होशियार।
2: अच्छा मानव, पता है इस तरह की घटना जो कुछ वर्षों के अंतराल पर होती है, जिसमें व्यापारिक हवाओं में अचानक ही ऐसा बदलाव आता है कि वो या तो कमजोर पड़ जाती हैं या फिर रुक जाती हैं और फिर ठीक वैसा ही होता है जैसा तुमने कहा, उसे क्या कहते हैं?
0: नहीं भैया।
1: चलो, किसी बात के लिए तो मानव ने नहीं कहा।
3: हाँ। अरे भाई मानव, इसे कहते हैं एल नीनो।
0: एल नीनो यानी?
2: अरे मानव, एल नीनो का स्पैनिश भाषा में मतलब होता है शिशु या कहें बालक ईसा, क्योंकि ये पेरू आदि में दिसंबर के माह में क्रिसमस के आसपास आता है, समझे?
1: पर विवेक भैया, इस एल नीनो के कारण पोषक तत्वों से भरपूर गहरा पानी ऊपर नहीं आ पाता है और पोषण न मिलने के कारण मछलियाँ भी मर जाती हैं, तो पेरू आदि देशों में एल नीनो तो अभिशाप की तरह होगा।
3: बिल्कुल सही कहा सृष्टि बेटी, पेरू इक्वेडोर ही क्यों, कई देशों पर एल नीनो का प्रभाव पड़ता है। लगभग आधी पृथ्वी की जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ता है।
0: कैसा प्रभाव अंकल?
2: इस एल नीनो के कारण पेरू जैसे सामान्यता सूखे देश में खूब बारिश होती है। कई बार भयानक बाढ़ आती है। जब पानी भरता है तो मच्छरों की तादाद भी बढ़ती है और मलेरिया का प्रकोप फैलता है।
3: हाँ, 1997 के अंत में उष्णकटिबंधीय प्रशांत से हिरोशिमा पर गिराए गए करीब लाखों बमों के बराबर ऊर्जा से भरा पानी अपने साथ एल नीनो पूर्वी प्रशांत के इन तटों पर लाया, जिसमें 1997-98 में करीब 2100 लोगों की मौत हुई और कम से कम 33 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।
2: और जानते हो मानव, इसके अलावा मंगोलिया में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और केनिया में सामान्य से 40 इंच अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई।
0: अच्छा, इतनी दूर तक प्रभाव था?
2: हाँ मानव, मध्य यूरोप में तो भीषण बाढ़ आई जिसके कारण पोलैंड में 55 और चेकोस्लोवाकिया में 60 मौतें हुई। साथ ही अमेरिका में फ्लोरिडा जैसे तटीय राज्य में कई चक्रवातों का हमला हुआ, हालांकि सामान्य से कम चक्रवात है।
3: हाँ।
0: ये चक्रवात कैसे बनते हैं?
1: अरे मानव, पहले एल नीनो तो जान ले, फिर चक्रवात पूछना। अच्छा अंकल, क्या इस एल नीनो का हमारे भारत पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है?
3: देखो सृष्टि बेटी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एल नीनो के कारण गर्म पानी बारिश बनकर पश्चिमी प्रशांत के क्षेत्रों को भिगोता है, वो तो अमेरिका पश्चिमी तट की ओर चल देता है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों में भयंकर सूखा पड़ सकता है। अगर एल नीनो बहुत ताकतवर है तो भयंकर सूखा पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी बहुत बारिश में कमी आ जाती है।
2: अंकल, मैंने कहीं पढ़ा है कि 1779 से 1793 तक चले एल नीनो के दौरान भारत में सूखे और फिर अकाल से करीब 6 लाख लोग मारे गए।
3: हाँ, ठीक कहा विवेक तुमने। उत्तरी अमेरिका जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ धरती के 8 से 13 किलोमीटर ऊपर बहने वाली जेट स्ट्रीम में भी नाटकीय बदलाव आता है। ये ध्रुवीय जेट स्ट्रीम थोड़ा खिसक कर कनाडा के उत्तर में चली जाती है, जिस कारण ठंडी हवा ऊपरी अमेरिका की ओर कम जाती है, जिससे सामान्य से गर्म तापमान रहता है।
2: अंकल, व्यापक रूप में देखे तो एल नीनो के प्रभाव के चलते प्रशांत के पूर्वी तटों पर अत्यधिक बारिश और बाढ़, गर्म पानी के कारण पोषक तत्वों का ऊपर न आना जिससे समुद्री जीवों में कमी, दक्षिणी अमेरिका में तूफान और तेज आंधियां, और अटलांटिक में सामान्य से कम चक्रवात आते हैं।
3: हाँ विवेक, एल नीनो के कारण जो समुद्र का तापमान बढ़ता है, इससे प्रवाल भित्ति जैसे नाजुक पारितंत्रों पर भी बुरा असर पड़ता है।
1: वो कैसे अंकल?
3: भाई सृष्टि बेटे, ये प्रवाल भित्तियां कई प्रकार के पौधों और मछलियों की शरण स्थली होते हैं। इन प्रवाल भित्तियों के आसपास जमा शैवाल जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, वो शैवाल इस गर्म पानी और सूरज की तेज रोशनी में नष्ट हो जाते हैं, जिससे प्रवाल भित्तियां सफेद होकर मर जाती हैं और इन्हें फिर से पनपने में बहुत समय लगता है।
0: इस एल नीनो के कारण पेरू और अन्य दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में खूब बारिश क्यों होती है?
4: अरे भाई, आप लोगों की बातें तो बहुत लंबी हो रही थी भाई। देखिए, इसलिए मैं जल्दी से चाय बना लाई।
5: अरे वाह, चाय तुमने बहुत बढ़िया किया।
4: और इस बार पकौड़े हैं।
0: अरे
4: वाह, चाय भी घर में
5: तुम भी लो
4: ना
3: भाई। ये तो और भी बढ़िया है भाभी, इससे मानव को उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में बारिश होने का कारण समझ आ सकेगा।
4: ये भला कैसे?
0: गर्म चाय से? वो कैसे अंकल?
3: अच्छा सृष्टि बेटे, वो जरा पानी का गिलास देना।
0: हाँ जी, लीजिए
5: बेटा।
3: हाँ हाँ, तो मानव तुम चाय या पानी को मत छुओ, इनके ऊपर की हवा को महसूस करो।
5: हाँ बेटा, जरा
4: ध्यान से मानव।
0: अंकल, चाय की ऊपर की हवा भी गर्म है।
3: बिल्कुल सही माना, यानी गर्म पानी अपने ऊपर की हवा को भी गर्म कर देता है। ठीक।
0: हाँ अंकल।
3: अच्छा आप सोचो कि ऐसे ही गर्म पानी से भरा बड़ा टब अगर बंद गुसल खाने में हो तो?
0: तो अंकल, वहाँ भी भाप से गर्मी बढ़ जाएगी।
3: शाबाश। और ऐसे लाखों करोड़ों अरबों टब हो तो कितनी भाप बनेगी? और हम जानते हैं कि इस नम गर्म हवा को कहीं तो जाना ही है, तो ये कहाँ जाएगी?
0: भाई साहब यहाँ तो नहीं आएगी।
1: अंकल ये गर्म हवा अपने साथ नमी को लेकर ऊपर की ओर जाएगी, जहाँ ये ठंडी होकर बादलों में बदल जाएगी
0: और फिर यही बादल बारिश बनकर बरसेंगे। समझ गया। क्योंकि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का पानी ज्यादा गर्म होता है और जब ये तटीय दक्षिण अमेरिका की ओर बढ़ता है तो ज्यादा नमी हवा में पहुंचती है, फिर यहाँ पर खूब बारिश होती है।
2: शाबाश मानव, अब तो तुम कुछ कुछ समझ ही गए।
3: एल नीनो को वैज्ञानिक एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन भी कहते हैं।
0: अच्छा अंकल, आपने बताया था कि एल नीनो के दौरान व्यापारिक हवाएं तो कमजोर पड़ जाती हैं, या फिर रुक जाती हैं, या फिर अपनी दिशा बदल लेती हैं।
3: हाँ बिल्कुल ठीक।
0: पर अंकल, अगर यही व्यापारिक हवाएं जो सामान्यतः पूर्वी प्रशांत से पश्चिम की ओर बहती हैं, अगर इसी दिशा में और तीव्र हो जाए तो क्या होगा?
3: बहुत बढ़िया सवाल किया तुमने मानव, शाबाश। हाँ तो विवेक तुम बताओ, अगर यही व्यापारिक हवाएं जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत में बहती हैं, वही और तेज बहने लगे तो क्या होगा?
2: अंकल, जब अमेरिका की पूर्वी या कहें ईस्टर्ली हवाएं सामान्य से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, तो ये सामान्य से अधिक गर्म समुद्री पानी को पश्चिम दिशा की ओर धकेलती हैं। हाँ। और पूर्वी प्रशांत के तटीय क्षेत्रों में अधिक ठंडा पानी नीचे से पोषक तत्व लेकर आता है। ये प्रक्रिया एल नीनो के ठीक उल्टी होती है और इसे ला नीना कहते हैं।
0: पर ये ला नीना क्या है?
3: हाँ मानव, ला नीना यानी छोटी बच्ची। ये प्रभाव एल नीनो के विपरीत होता है और दिसंबर से मार्च के महीने में ये अधिक तीव्र होता है।
1: अंकल, अगर ये एल नीनो से उल्टा होता है तो इसके कारण प्रशांत के पश्चिमी तट पर अधिक बारिश और बर्फबारी होती होगी, उत्तरी अमेरिका कनाडा आदि अधिक ठंडे होते होंगे, अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तट पर सूखा पड़ता होगा, अटलांटिक में ज्यादा चक्रवात आते होंगे
0: और भारत में सामान्य से तेज मॉनसून की बारिश, है ना अंकल? अरे हाँ।
3: बिल्कुल ठीक सृष्टि और मानव, बिल्कुल सही कहा तुमने। इसी ला नीना के कारण ऑस्ट्रेलिया में औसत से अधिक बारिश और दक्षिण अफ्रीका में भी ज्यादा वर्षा होती है।
5: भाई इस्लाम, ऐसा लगता है कि एल नीनो और ला नीना प्रकृति का अपना तरीका है ऊर्जा पोषक तत्वों आदि का एक संतुलन स्थापित करने का, है ना?
4: एक बात बताइए भाई साहब, क्या हर एल नीनो के बाद ला नीना आती है?
3: नहीं भाभी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एल नीनो के बाद ला नीना ही आए। एल नीनो जहाँ कुछ महीनों से कई वर्षों तक अस्तित्व में रह सकता है, वहीं ला नीना 8 महीने से 12 महीने तक ही रहती है।
4: अच्छा।
3: मोटे तौर पर एल नीनो के मुकाबले ला नीना आधी संख्या में ही दिखी है।
1: अंकल, ला नीना के दौरान भूमध्य रेखा पर भी तो समुद्री सतह का तापमान कम हो जाता होगा?
3: हाँ सृष्टि बेटे, ला नीना के दौरान समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से थोड़ा कम दर्ज किया गया है।
5: यानी एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ता है और ला नीना के दौरान तापमान कम होता है।
3: हाँ, बिल्कुल सही सूर्य प्रकाश भाई, मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं, एक गर्म तो एक ठंडा।
0: सच में अंकल, महासागर और वायुमंडल का संचरण भी कमाल है। पर भैया आपने चक्रवात के बारे में तो बताया ही नहीं।
2: मानव, कुछ अगली बार के लिए भी तो छोड़ दे।
1: अरे ये तो कमाल हो गया।
4: क्यों, क्या हुआ सृष्टि?
1: अरे हमारे मानव ने इतनी देर से ये कहा ही नहीं कि उसे सब कुछ पता है।
4: सृष्टि।
0: अरे दीदी, अब मैं ये जान गया हूँ कि सब कुछ पता करना तो किसी के बस में नहीं है, और वैसे भी जीवन में नया नया सीखना तो हमेशा चलता ही रहता है।
4: अरे वाह, मानव तो बहुत समझदारी की बातें करने लगा है।
3: बहुत अच्छे, और ये बिल्कुल सच है कि कुछ नया सीखना जीवन से जुड़ी प्रक्रिया है। शाबाश मानव।
1: कमाल है, अचानक से हमारा मानव इतना समझदार कैसे हो गया?
0: अरे दीदी, वो इसलिए क्योंकि मुझे सब पता जो है।

धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 24वीं कड़ी सुन रहे थे, कभी जानू कभी ना जानू।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं, टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
0: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुआ।
1: अरे मैं तो कहूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अभी कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको कि SNCO बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCU में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCU में दिखा दें, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: हाय, मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: कौन? अरे हम बोल रहे हेलो कौन? अरे हम बोल रहे हेलो कौन? अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: दो दीवाने शहर में, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक। दो दीवाने शहर में ओनली ऑन सारेगामा, सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

मेरा दिल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
0: जिंदगी, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय रुहान मलिक, लिरिक्स बाय साकिब नवी, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।
1: बहुत

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़प जा मच्छर बन पर भारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
6: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
0: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: एक

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे, मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ, मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ट्वेंटी 18 में यहाँ पे JEE-AS के 22 केसेस मिले थे, जिसमें दो लोगों की डेथ भी हो गई थी।
2: हमारे गांव देहात के जो भी केस होते थे यहाँ पे, हमें हर केस को जो है जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था, लेकिन दस्तक अभियान के थ्रू जो है काफ़ी हद तक जो है केस कम करने में सफलता मिली है। इसके लिए सबसे पहले जिले स्तर पर मीटिंग की गई, फिर उसके आधार पर हम लोगों ने जो है एक माइक्रो प्लान बनाया।
1: आप लोग अपने अपने माइक्रो प्लान यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि इंटर डिपार्टमेंटल सबको मिल जाए। ठीक है, तो आंगनवाड़ी और आशा साथ में ही विजिट करेंगे डोर टू डोर।
3: डोर बाय डोर टू जाते हैं और हर घर हम ये सूचना देते हैं कि साफ सफाई के बाद आप हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को और अपने खुद फूल आस्तीन का कपड़ा पहने, बच्चों को मोजा और अपने मोजा पहने रहें, क्योंकि जो मच्छर लगते हैं उससे हमारे बच्चों को और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वही बीमारी का कारण हो सकता है।
4: पानी उबालने के लिए बताते हैं और पानी करछिल से निकालें, उसमें हाथ न डालें, हाथ धोल करके पानी निकालें।
1: कोविड में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हमारा कैंपेन। हमारा कोई भी हेल्थ वर्कर डोर टू डोर सर्वे कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि किसी को फीवर है या क्या सिम्टम्स हैं, तो हम उसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर कोविड रिलेटेड पेशेंट है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सकें, JEE-AS रिलेटेड है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सकें टाइम पर। अभी दस्तक अभियान के तहत जो है हमारी ग्राम पंचायतों में सफाईकर्मी नाली की सफाई कर रहे हैं, झाड़ी काटने की एक्टिविटीज चल रही हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है।
2: ये बहुत ही अच्छी योजना रही माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके माध्यम से हम लोग JEE-AS केस कम करने में और उसकी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम करने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ ये।
1: हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट किया है, वो वहाँ पर अपने स्कूल्स में टीचर्स के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को दस्तक कैंपेन के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
3: बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता सब लोग जागरूक हो रहे हैं।

0: सबको हाथ बटाना है, टीवी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीवी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीवी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं, अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: सफाई ही आधा ईमान है,
3: यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है।
2: और ये भी तय है, स्वच्छ रहकर ही हम तमाम बीमारियों को मात दे सकते हैं।
3: कैसे, कब कब हाथ धोने चाहिए, चलिए ये हम आपको बताते हैं।
2: खाना बनाने से पहले,
3: खाना खाने से पहले,
2: बच्चों को खाना खिलाने से पहले,
3: शौचालय के प्रयोग के बाद,
2: बच्चों के मल को साफ करने के बाद,
3: बाहर से आने के बाद,
2: पशु को छूने और उनके मलमूत्र को साफ करने के बाद,
3: खांसने और छींकने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथों को धोएं और हर बार हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं।
2: हमारा भविष्य हाथों में है,
3: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से
3: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
2: जनहित में जारी।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
1: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
0: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
3: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
2: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
3: अबे शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
2: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
4: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
3: कल नहीं अभी।
4: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.